0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, मैं मोहन जोशी। अवीट गोडीची जुनी मराठी गाणी आणि आजच्या काळातील नवीन मराठी गाणी, सोटीला नवे विचार, सकारात्मक गप्पा, यासाठी ऐकत रहा FM रेनबो

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करें। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली

ओएमआरशीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई ओएमआरशीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआरशीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोतों से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धियों में से एक बताया है। पार्टी के IT विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में आयोजित भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। PV सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: फेसबुक ने स्काई व्हाट्सएप इन लाइफ वन मोर काम इतनो आराम सो स्टार्टअप योर डे विद रेनबो फंड डे। रेनबो फंड डे,
2: रेनबो फंड डे, रेनबो फंड डे।
1: म्यूजिकल साथ, रियल लाइफ बात, सिनेमा नाटक, भटकंती खास, स्टार्टअप योर डे।

सज्जन म्हणून म्हणूया. आता सरळ शब्द घातले की झालं गाणं.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की

0: सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
2: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिम्बई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली मिम्बई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है।

0: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
1: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
2: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन, बसरमौर में येलो अलर्ट जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
3: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
0: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
4: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन की लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है, वह विक्रम पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं, जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78% हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमेरिका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और ब्रह्मयुगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है, नई पीढ़ी में गोल्ड की इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। The headlines. Government convenes all-party meeting today ahead of monsoon session of parliament beginning tomorrow. National Testing Agency warns students and parents against submitting fake or AI-generated OMR sheets for scrutiny, says such acts can invite legal action. CBSE declares results of Class 10 Second Board Examination 2026. Shri Amarnath Ji and Vaishno Devi Yatras temporarily suspended due to rough weather forecast. And England beat France 6-4 in thrilling third place match to secure bronze medal in FIFA World Cup 2026. Argentina to take on Spain in final tonight. The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of Parliament beginning tomorrow. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure smooth functioning of both Houses of Parliament. The monsoon session will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In a stern warning amid rising concerns over manipulated documents, the National Testing Agency, NTA, has issued a strong advisory to students and parents regarding the submission of OMR sheets for scrutiny. The agency revealed that many OMR sheets recently submitted for review have turned out to be fake or artificially generated, prompting closer monitoring of all complaints. A report.
7: The NTA has stated that it is actively scrutinizing every complaint received. However, it cautioned that submitting counterfeit or artificial intelligence-generated OMR sheets could lead to serious legal consequences for the complainants. In a social media post, the agency said students and parents are advised to submit only original OMRs for scrutiny. Any fake AI-generated OMR may invite legal action against the complainant. This development comes at a time

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। 107.1 एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ, और साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन एयर पर बिल्कुल लाइव और मस्त मुंबई के साथ। मैं ममता सहगल हूं आपके साथ पूरे 11 बजे तक, लेकर कुछ खास बातें, कुछ ऐसी बातें जो आपको बहुत ही मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगी, और कुछ ऐसी बातें जो आपको शायद कुछ सोचने पर मजबूर कर दें। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि ठीक 9:30 पर होगा हमारा कार्यक्रम वतन के राग। तो बस तब तक के लिए मेरा और आपका जो साथ है वो गीतों भरा रहेगा, थोड़ा जानकारियों भरा रहेगा, और थोड़ा इन्जॉयमेंट का रहेगा। तो चलिए चलते हैं अपने इस इन्फोटेनमेंट के सफ़र पर।

क्या आप जानते हैं एक ऐसी शादी के बारे में जो अंतरिक्ष में हुई थी? जी हाँ, रूस के एक अंतरिक्ष यात्री ने रचाई थी अंतरिक्ष में शादी, जो पहली ऐसी शादी थी जो अंतरिक्ष में की गई थी। क्या है इस शादी की कहानी, बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ यही 107.1 FM रेन

तो क्या आपने सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है? भाई ऐसी ही तो खबरें ढूंढ कर लाते हैं हम आपके लिए 107.1 FM रेनबो पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन एयर पर मुंबई स्टूडियो से बिल्कुल लाइव। तो भाई बात है साल 2003 की, महीना था अगस्त था और तारीख थी 10, और इस दिन रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी मेलेंचको ने अंतरिक्ष में जब शादी रचाई तो वो ऐसे दुनिया के पहले इंसान बन गए थे जिसने अंतरिक्ष में शादी रचाई। और फिर मैंने कहा ना, दिन को इतिहास बनते वक्त नहीं लगता, तो इन्होंने ऐसा करके इतिहास रच दिया जब वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर 240 मील यानी कि लगभग 390 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद थे। तब उन्होंने पृथ्वी पर टेक्सास में मौजूद अपनी मंगेतर से शादी कर ली। कैसे, आपको बताते हैं बस कुछ ही देर में।

0: मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: वेलकम बैक 101.1 एफएम रेनबो. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से. मैं हूं ममता सहगल आपके साथ और हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष में हुई शादी की. दरअसल हुआ ये था कि इन्होंने अपनी शादी की जो डेट थी वो पहले ही तय करके रखी थी कि मेरा ये अंतरिक्ष अभियान है और इसके बाद जब मैं वापस आऊँगा तो फिर मैं जो है ऐसे ऐसे करके शादी कर लूँगा इस तारीख को. लेकिन हुआ ये कि इनका जो अंतरिक्ष का प्रोग्राम था वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया. लेकिन क्योंकि इन्होंने ये सोचा था कि मैं शादी जो है करूँगा तो इसी तारीख को करूँगा, तो फाइनली इन्होंने अपनी मंगेतर एकातेरिना दिमित्रीव से जो वादा किया था उसके तहत वीडियो और सैटेलाइट लिंक के जरिए इन्होंने शादी कर ली. इस अनोखी शादी में इन अंतरिक्ष यात्री के जो साथी थे एडल्यू, उन्होंने बेस्टमैन की भूमिका निभाई और कंप्यूटर कीबोर्ड पर शादी का संगीत भी बजाया गया. है ना, बहुत खास बात. और इस प्यार को आप क्या नाम देंगे, इस लॉयल्टी को आप क्या नाम देंगे, इस खुशी को आप क्या नाम देंगे. भाई बहुत कम होता है कि ऐसे प्यार करने वाले मिले जो अपनी अपने वादे को निभाते हैं. चलिए कुछ और बातें आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल एक खूबसूरत सा गीत आपके लिए. बने रहिए हमारे साथ 107.1 FM रेनबो पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से.

चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि ठीक 9:30 पर होगा कार्यक्रम वतन का राग, तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। 10 बजे होंगे समाचार हमारे मुंबई केंद्र से हिंदी में, और समाचारों के उस पार नमस्ते भारत में मैं रहूंगी आपके साथ एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए जो आज शायद गहन चिंता का विषय बनता जा रहा है। क्या है वो बात बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत सा गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन का राग।
1: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है सीतांशु दत्त रॉय। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, गुरुग्राम से महेंद्रनाथ महर्षि और दिल्ली से नरेंद्र देव पांडे। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
2: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
3: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
2: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
3: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
2: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

स्वरों की यात्रा निस्सीम होती है। स्वर न भाषा के दायरों में सिमट पाते हैं और न ही सरहदें उन्हें बांध पाती हैं। लेकिन जब कोई साधक अपने सुरों में मातृभूमि का प्रेम, अपनी संस्कृति की गरिमा और अपनी आत्मा की तपस्या को एक साथ पिरो देता है, तब संगीत मात्र मनोरंजन का साधन नहीं रहता, वो वतन का राग बन जाता है। आज की प्रस्तुति में एक ऐसी विलक्षण स्वर साधिका का स्मरण, जिनकी आवाज में कर्नाटक संगीत की शास्त्रीय ऊंचाइयां थीं और देशभक्ति की प्रखर चेतना थी, जिन्होंने परंपरा का सम्मान करते हुए अपनी एक राह बनाई और अपने स्वरों से ये सिद्ध किया कि सच्चा संगीत मनुष्य को मनुष्य से और मनुष्य को अपने वतन से जोड़ता है। वतन का राग कार्यक्रम में आज बात कर्नाटक संगीत विभूति पद्म विभूषण डी के पट्टम्माल की।

डी के पट्टम्माल यानी दामल कृष्णस्वामी पट्टम्माल कर्नाटक संगीत की महानतम गायिकाओं में से एक हैं। उन्हें एम एस सुब्बुलक्ष्मी और एम एल वसंत कुमारी के साथ कर्नाटक संगीत की महिला त्रिमूर्ति में स्थान प्राप्त है। उनका जीवन संगीत, साहस और परंपरा को एक नई दिशा देने वाली प्रेरक कहानी है। डी के पट्टम्माल का जन्म 19 मार्च सन 1919 को तमिलनाडु के कांचीपुरम में हुआ था। उनके पिता दामल कृष्णस्वामी दीक्षितार स्वयं संगीत के गहरे जानकार थे। उनकी माताजी का नाम राजम्माल था। उनकी माताजी भी अत्यंत सुरीली गायिका थीं। लेकिन ये वो समय था जहां महिलाओं के लिए लक्ष्मण रेखा बहुत गहरी खींची हुई थी। उन्हें घर की चार दीवारी के बाहर, यहां तक कि रिश्तेदारों के सामने भी गुनगुनाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन उनके पिता ने अपनी बेटी के भीतर छिपी संगीत प्रतिभा को पहचान लिया था। वो अपने पिता की उंगली थामे संगीत सभाओं में जातीं और वहां जो कुछ भी वो सुनतीं वो उनके बाल मन पर अंकित हो जाता। घर लौटकर वो अपनी तुतली जुबान में उन कठिन बंदिशों को हूबहू गाया करतीं। इस छुप छुप कर चलने वाली स्वर साधना में उनके भाई डी के रंगनाथन, डी के नागराजन और डी के जयरामन

के सहयात्री बने। उन्होंने मात्र 14 वर्ष की उम्र में मद्रास में अपनी पहली मंचीय प्रस्तुति दी। प्रतिष्ठित रसिका रंजनी सभा में उनके स्वर गूंजे तो श्रोता मंत्रमुग्ध थे, लेकिन उस दौर में एक लड़की का सार्वजनिक मंच पर तंबूरा लेकर बैठना एक सामाजिक भूचाल से कम नहीं था। समाज ने उंगलियां उठाई, रूढ़िवादियों ने आंखें तरेरी, लेकिन स्वर की एक मधुर यात्रा आरंभ हो चुकी थी। मद्रास कॉरपोरेशन रेडियो की तरंगों पर भी उनकी आवाज गूंजी और समय ने देखा कि कर्नाटक संगीत का इतिहास बदल

कर्नाटक संगीत जगत में डीके पट्टम्माल की आमद से संगीत जगत के बड़े बड़े दिग्गजों को ये एहसास हो गया था कि कर्नाटक संगीत का इतिहास अब दो भागों में बंट चुका है, डीके पट्टम्माल के आने से पहले का इतिहास और उनके आने के बाद का इतिहास। इसी स्वर्ण काल में उनका परिचय महान संगीतकार और गायक पापनाशम शिवन से हुआ, जिन्होंने इस पवित्र नदी जैसी गायिका को अपने तमिल कृतियों का अमूल्य खजाना सौंप दिया। कर्नाटक संगीत के मंच पर जब पूरी तरह पुरुषों का प्रभुत्व था, तब पहली बार डीके पट्टम्माल ने मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करते हुए इस परंपरा को बदलने का साहस दिखाया। उन्होंने न केवल सार्वजनिक मंचों पर प्रस्तुति दी, बल्कि रागम तानम पल्लवी जैसी अत्यंत कठिन और उस समय तक केवल पुरुषों का क्षेत्र मानी जाने वाली इस शैली में भी प्रस्तुति दी। उस समय तक पुरुष कलाकार ये मानते थे कि ये महिलाओं के बस की बात नहीं है। रागम तानम पल्लवी कर्नाटक संगीत की वो विधा है जहां गणित की सटीकता, फेफड़ों की असीम शक्ति और कलाकार की कल्पनाशीलता की परीक्षा होती है। उस समय के पुरुष कलाकार ये मानते थे कि महिलाएं केवल सरल भक्ति रस से पूर्ण कीर्तन गा सकती हैं, लेकिन वो इस बौद्धिक चक्रव्यूह को नहीं भेद सकती। डीके पट्टम्माल ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने न केवल रागम तानम पल्लवी को गाया, बल्कि संगीत के इतिहास की सबसे जटिल और लंबी ताल सिंहनंदन ताल, जिसमें 128 अक्षर यानी 128 मात्राएं होती हैं, तथा शरभनंदन ताल में ऐसी पल्लवियों का ताना बाना बुना कि बड़े बड़े मृदंग वादक भी चकित रह गए। उनकी प्रतिभा का इतना अधिक सम्मान था कि प्रसिद्ध मृदंगम वादक विद्वान पालघाट मणि अय्यर, जो कि परंपरागत रूप से केवल पुरुष गायकों के साथ ही संगत करते थे, उन्होंने डीके पट्टम्माल के लिए ये परंपरा तोड़ दी। उनकी गायन क्षमता को गुणीजनों ने बहुत मान दिया और उन्हें स्नेहपूर्वक डीकेपी अम्मा कहा जाने लगा। उनकी बेजोड़ तकनीकी महारत को देखकर कर्नाटक संगीत जगत ने उन्हें नया नाम दिया, पल्लवी पट्टम्माल।

1939 में डीके पट्टम्माल का विवाह आर ईश्वरन के साथ संपन्न हुआ, जिन्होंने अपनी पत्नी की प्रतिभा को पहचाना और उनकी संगीत यात्रा के अत्यंत महत्वपूर्ण साथी बने। डीके पट्टम्माल ने देश की स्थिति को देखते हुए अपने स्वर को राष्ट्र आराधना का माध्यम बना दिया। उन्होंने राष्ट्रवादी तमिल फिल्म त्यागभूमि में पहली बार पार्श्व गायन किया। इस फिल्म में उन्होंने सुप्रसिद्ध कवि सुब्रमण्यम भारती के क्रांतिकारी गीतों को अपनी आवाज दी। ब्रिटिश सरकार बौखला गई और फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और फिर सन 1947 में भारत आजाद हुआ। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि भारत गुलामी की जंजीरों को तोड़कर नई सुबह की ओर बढ़ रहा था। तब ऑल इंडिया रेडियो मद्रास के स्टूडियो में डीके पट्टम्माल तंबूरा लेकर खड़ी थीं। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने रात के 12 बजाए, देश में रोमांच फैल गया। भारत आजाद हुआ और डीके पट्टम्माल ने महाकवि सुब्रमण्यम भारती का अमर स्वतंत्रता गीत गाया, आडवो में पल्ली पाडवो में आनंद सुतंत्रम, जिसका अर्थ था आओ हम सब मिलकर नाचें, आओ हम सब मिलकर गाएं कि हमें वो पावन स्वाधीनता मिल गई है।

उनकी आवाज में देश की आजादी का वो पहला जश्न तैर रहा था। इस गीत ने डीके पट्टम्माल को हमेशा हमेशा के लिए राष्ट्र की साझी चेतना का हिस्सा बना दिया। सुप्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के अनेक गीतों को उन्होंने अपना स्वर दिया, जो आज संगीत जगत की अमूल्य धरोहर हैं। डीके पट्टम्माल कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक मुथुस्वामी दीक्षितर की कृतियों की सबसे प्रामाणिक संवाहक बनी। दीक्षितर की कृतियां अपनी विशेष गति, दार्शनिक संस्कृत और बेहद सूक्ष्म गमकों के लिए जानी जाती हैं। डीके पट्टम्माल ने इन कृतियों के मूल स्वरूप को इस तरह से सहेजा जैसे किसी धरोहर को सहेजा जाता है।

डीके पट्टम्माल को तमिल फिल्मों में गीत गाने के कई प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने केवल भक्ति और देशभक्ति से जुड़े गीत गाना ही स्वीकार किया। फिल्म त्यागभूमि के बाद उन्होंने फिल्म इरुवर, रामराज्यम, वेधाल उलगम सहित कई फिल्मों में अपनी आवाज दी। डीके पट्टम्माल केवल एक महान गायिका ही नहीं थी, बल्कि वो एक महान संगीत गुरु भी थी। और आश्चर्य की बात तो ये है कि उन्होंने स्वयं कर्नाटक संगीत की औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। पिता के साथ संगीत सभाओं में गुणीजनों को सुन सुनकर ही उन्होंने संगीत सीखा था, लेकिन स्वयं उन्होंने अनेक कलाकारों को प्रशिक्षित किया। उनके छोटे भाई डी के जयरामन ने उनके मार्गदर्शन में संगीत शिक्षा प्राप्त की और आगे

उछलकर संगीत कलानिधि सम्मान प्राप्त किया। उन्होंने अपनी पुत्रवधु ललिता शिवकुमार को भी संगीत सिखाया, जो अक्सर मंच पर उनके साथ संगत करती थीं। और उनकी पौत्री और शिष्या नित्याश्री महादेवन आज कर्नाटक संगीत की सुप्रसिद्ध गायिका हैं। डी के पट्टमाल को संगीत कलानिधि, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। इसके साथ ही उन्हें गान सरस्वती की उपाधि भी प्रदान की गई थी। 16 जुलाई सन 2009 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी विलक्षण संगीत विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि डीके पट्टम्माल का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन लें, डीके पट्टम्माल का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

107.1 FM रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, और अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। अब से कुछ ही देर में यानी कि ठीक 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और समाचारों के उस पार नमस्ते भारत के साथ मैं ममता सहगल एक बार फिर से रहूंगी आपके साथ। तो बस अब से कुछ ही देर में होंगे समाचार।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: नमस्कार, 107.1 एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन एयर पर बिल्कुल लाइव। वक्त हो चला है हिंदी में समाचारों का। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल नई दिल्ली में घोषणा की गई। हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। मामूती और कार्तिक आर्यन को उनकी फिल्मों ब्रह्मा युगम और चंदू चैंपियन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का संयुक्त राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। सुमीरा राय द्वारा निर्देशित भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म मराठी फिल्म हमसफर है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार आनंद एल राय को उनकी फिल्म स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए दिया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। CBSE के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणामों के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। समाचारों में आगे है, महाराष्ट्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी AI और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए संपूर्ण राज्य में एग्री हैकाथॉन के रूप में राज्यव्यापी योजना को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों की चुनौतियों का समाधान खोजना है। प्रतियोगिता का शीर्ष पुरस्कार दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। प्रतिवर्ष विजेता को 25 लाख रुपयों का नगद पुरस्कार मिलेगा, जबकि उपविजेता को 15 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। समाचारों के अंत में खेल जगत से समाचार। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलो भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में यह भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो वर्ग भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुआ। बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो के मुंबई प्रसारण सेवा के साथ।

और शायद आजकल काफी लोग यही बोल रहे हैं, बिन तेरे क्या है जीना, लेकिन ये किसी शख्स के लिए नहीं है, ये है AI टूल्स के लिए। जी हाँ, वो AI टूल्स जिन्होंने काफ़ी हद तक आपका बहुत सारा काम जो है वो आसान कर दिया है, लेकिन यही AI टूल्स शायद आने वाले समय में आपकी नौकरी भी खा सकते हैं, ऐसा कई लोगों के दिल में डर बैठा हुआ है। और आज हम वही बातें करने वाले हैं जो हमारे युवाओं ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों के मन में है कि क्या आने वाले वक्त में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सबकी नौकरियों के लिए खतरा बन सकता है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आपका नमस्ते भारत के साथ। मेरा दिल मेरी बातें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं, ममता सहगल। करेंगे आज उसी डर की बात जो कहीं ना कहीं हमारे हर युवा और उन सभी के मन में है जो इस वक्त एक बहुत ही अच्छी नौकरी में है, और स्पेशली जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है कहीं ना कहीं उन्हें ये डर सताने लगा है कि क्या आने वाला वक्त AI का होगा, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी नौकरियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। करेंगे इसी विषय पर बातचीत, बने रहिए हमारे साथ।

वेलकम बैक 107.1 एफएम रेनबो, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, मैं हूं ममता सहगल आपके साथ। भाई अगर एआई की कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें भी हैं। आप चाहें तो आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आने वाले समय में सबकी नौकरियों के लिए खतरा बन सकता है। और मैं यहां आपको कुछ पॉइंटर्स ऐसे बताऊंगी जो एआई की अच्छी बातें भी हैं और वही बातें शायद एआई के लिए बुरी भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, रूटीन और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स जो होते हैं जैसे डेटा एंट्री, बेसिक ट्रांसलेशन या रूटीन कस्टमर सपोर्ट, ये सारे जो काम हैं आजकल बड़ी तेजी से एआई टूल्स द्वारा किए जा रहे हैं जो पहले इंसान करते थे। लेकिन एक बात जब भी आप एआई के बारे में सोचें तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में बिठाइए कि उस एआई को बनाने वाला भी इंसान है, उस एआई को कंट्रोल करने वाला भी इंसान है, उस एआई को अपने इशारों पर नचाने वाला भी इंसान है। तो आप

0: जो भी सोचे, जो भी समझे, ये बातें अपने दिमाग में ध्यान से बिठाइएगा। यस ऑफ कोर्स, आपका काम जरूर आसान हुआ है। चुटकियां बजाते ही आपके हर सवाल का जवाब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाता है जब आप एआई टूल्स यूज करते हैं। कोई कहानी लिखनी है, कोई कविता लिखनी है, किसी सवाल का जवाब चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, पूरे इंटरनेट का सार चाहिए, चाहे जो भी हो, एक क्लिप के ऊपर, एक वर्ड कमांड के ऊपर, एक कोड के ऊपर सब चीज़ आपके सामने हाजिर हो जाती है। लेकिन जहाँ अच्छाई होती है वहाँ तो बुराई भी आती ही है कहीं ना कहीं। तो कई बार जो अच्छी बातें होती हैं वही बुरी बनकर भी सामने आ जाती हैं। अब ऐसा तो होता ही है, क्योंकि अच्छाई और बुराई दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। बने रहिए हमारे साथ 107.1 FM रेनबो। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, मैं हूं ममता सहगल आपके साथ। और साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन एयर पर, कहीं से भी कभी भी।
1: आकाशवाणी FM रेनबो। पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

अमान मलिक और श्रेया घोषाल की आवाज़ में अभी आपने सुना बेहद खूबसूरत सा गीत ज़रूरत से ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और कहीं ना कहीं आप लोगों को अगर ये लगता है कि ये आने वाले दिनों में ख़तरा बन सकता है सभी की नौकरियों के लिए, तो इस बारे में मैं चाहती थी कि आप अपने विचार हमारे साथ साझा करें। चलिए, अब मैंने जैसा कहा कि मैं आपको अच्छी और बुरी बातें बताऊंगी एआई की, तो सॉफ्टवेयर और आईटी क्षेत्र में भारत के जो आईटी हब हैं, जैसे कि मुंबई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, यहाँ पर जो कंपनियां हैं पारंपरिक जो ट्रेडिशनल कोडिंग होती है उसकी जगह कई जगह पर जो है एआई संचालित समाधानों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। रिसोर्सेज पे एआई से जो कंट्रोल होते हैं उन रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो इसके चलते एंट्री लेवल प्रोग्रामिंग और जूनियर डेवलपर की भूमिकाओं में काफी बदलाव आया है। बट फिर बात वही आ जाती है कि एआई को बनाने वाला भी इंसान है, तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। चाहे एआई कितना भी स्मार्ट हो, लेकिन उसको जिसने बनाया वही तो सबसे स्मार्ट होगा, है ना। वैसे हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन हमारे साथ है, लेकिन फिलहाल वक्त एक खूबसूरत से गीत का।

तो भाई ढेर सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज मोहर जी हमारे साथ हैं, प्रणव शिंदे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य के लिए एक बड़ा धोखा या खतरा साबित हो सकता है। कई तकनीकी वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि यदि AI के विकास और उपयोग पर सही नियंत्रण नहीं रखा गया तो इसके परिणाम मानवता के लिए काफी नुकसानदायक हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, किसी भी चीज की अति हमेशा ही बुरी होती है। तो हर चीज अगर एक कंट्रोल में की जाए, एक लेवल में की जाए, एक हद में की जाए, एक लिमिट में की जाए, तभी हम उस चीज़ के ऊपर जो है उस चीज़ के फायदे उठा सकते हैं। तो चाहे वो अति किसी भी चीज़ की हो, वो हमेशा बुरी होती है। रजनीकांत जी ने हमें मैसेज किया है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम प्रजापति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभलक्ष्मी मस्तकर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विजेंद्र घटोल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ममता महेश भाटकर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अजय सखारे जी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी हमारे साथ हैं। सुनील गायकवाड़ जी भी हमारे साथ हैं, पुणे से ये मैसेज कर रहे हैं। सुनील, सुषमा, राजवीर, अनन्या गायकवाड़, कवि नीरज जी की डेथ एनिवर्सरी है तो वो उनकी याद में एक गीत सुनना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगी अपने कार्यक्रम में इस गीत को शामिल करने का, लेकिन क्योंकि ये जो है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम नहीं है, इसलिए मैं आपसे वादा नहीं कर सकती क्योंकि वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब होती हैं। अनमोल रमाकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। प्रमोद चिंचोलकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीधर मुराजकर जी हैं, बाबा दादर हैं, राजेंद्र परमार जी हैं, महेश भाटकर जी हैं, ओमकार काटकर जी हैं, प्रमोद खरखनिस जी हैं, दीपा पालकर जी हैं, दत्तात्रेय आदत जी हैं, फिरोज सिगनपुरिया जी हैं, अंजू जी अंधेरी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हितेंद्र दास जी हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ सुबह से जुड़े रहने के लिए। ममता जायसवाल जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे AI के बारे में। रघुनाथ खानुकर जी कोल्हापुर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे थे क्रिएटिव और रणनीतिक भूमिकाओं के बारे में, AI की अलग अलग भूमिकाओं के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आगे हम बात कर रहे हैं क्रिएटिव और रणनीतिक भूमिकाओं की। कॉन्टेंट राइटिंग, डिजाइनिंग और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में AI जो है वो इंसानों की काफ़ी मदद कर रहा है, लेकिन क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग के लिए अब भी इंसानों की ज़रूरत होती है। जी हाँ, क्योंकि AI ये नहीं डिसाइड कर सकता कि आपके लिए सबसे बेहतर क्या है। तो बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो आपको खुद लेने पड़ते हैं, वो AI आपके लिए नहीं ले सकता। और जैसा कि मैंने कहा कि AI कभी इंसानों के दिमाग की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि इससे जुड़े दो किस्से मैं आपको बताने वाली हूँ। बने रहिए हमारे साथ।

तो चलिए आपको एक किस्सा बताती हूँ जहाँ पर एआई के ऊपर इंसानी दिमाग भारी पड़ गया था। तो ये किस्सा है आईआईटी खड़गपुर का ओपन बुक और एआई एग्जाम का, जिसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। तो हुआ ये था कि एक प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट से कहा कि मैं तुम्हारा एग्ज़ाम लूँगा और आपको फुल छूट है कि आपको जो भी एआई टूल यूज़ करना है, मोबाइल यूज़ करना है, इंटरनेट यूज़ करना है, जो भी किताबें यूज़ करनी है, जो आपको यूज़ करना है आप यूज़ करिए और मेरे प्रश्न पत्र में दिए गए सवाल का जवाब दीजिए। हुआ ये कि प्रोफेसर साहब ने वो सवाल कुछ इस कदर लिख दिया था कि वो इतना कठिन और अनोखा हो गया कि उसके आगे इंटरनेट और एडवांस एआई टूल्स भी फेल हो गए। छात्रों ने, स्टूडेंट्स ने बहुत तरीके से कोशिश की कि उस सवाल का जो पर्टिकुलर जवाब है वो ढूंढ के लिख सके, कर सके, लेकिन जब किसी भी टूल से, किसी भी सवाल से, किसी भी तरीके से उसका आंसर नहीं मिला, तो इस एग्ज़ाम की काफ़ी चर्चा हुई थी सोशल मीडिया पर। काफ़ी मीम्स भी बने थे जहां पर ऐसा कहा गया कि एआई ने तो भैया खुद ही हाथ खड़े कर दिए और कहा सॉरी भाई ये तो मुझसे भी ना हो पाएगा। इस तरह के काफ़ी जो मीम्स थे वो काफ़ी वायरल हुए थे। तो जैसा कि मैंने कहा कि इंसानी दिमाग का कोई भी मुकाबला नहीं है, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है, और ऐसा ही कुछ कहा था फिजिक्स के भगवान कहे जाने वाले पद्मश्री डॉक्टर एचसी वर्मा ने, जिन्होंने एआई को खुला चैलेंज दिया है कि जो मैं पेपर सेट करता हूँ, कर सकता हूँ, उसे एआई सॉल्व कभी नहीं कर सकता। और उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात कही है और ये बात बिल्कुल सही है कि इंसानी दिमाग का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। यकीन ना हो तो आप खुद जो है कुछ सवालों के जवाब जो है, कुछ सिचुएशंस के जो डिसीजंस है वो एआई से पूछने की कोशिश कीजिए, देखिए एआई आपके सामने हाथ खड़े कर देगा, क्योंकि इंसानी दिमाग जो है वो किसी से हार नहीं सकता और हमारे पास जो इमोशंस हैं वो एआई के पास नहीं होते। तो एआई आपके लिए एक साथी ज़रूर बन सकता है, एक मददगार साथी ज़रूर बन सकता है, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी कभी नहीं बन सकता। तो बजाय इसके कि आप इस तरह के टूल्स के ऊपर डिपेंड हो जाएं पूरी तरह से, आप अपने दिमाग को चलाना शुरू कर दीजिए। स्पेशली हमारे यंगस्टर्स जो आजकल हर चीज़ के लिए बस तुरंत से जाते हैं, इंटरनेट पे टाइप करते हैं, सवाल का जवाब लेते हैं और काम ख़त्म कर देते हैं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर जो क्षमता है वो एआई के अंदर नहीं है। हाँ, एआई कोई बुरी चीज़ नहीं है जब तक कि आप एक कंट्रोल और एक लिमिट के साथ, एक हद के साथ उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि एआई बनाने वाला भी इंसान ही है। तो आप कैसे इंसानी दिमाग को कम आंक सकते हैं। फिलहाल मैं चाहूंगी आपसे इजाजत, क्योंकि 10:58 पर होंगे समाचार और उसके बाद होंगे पोस्ट बॉक्स नंबर 111। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।

अब मैं भी थोड़ी देर के लिए गुम होने जा रही हूँ, मतलब मैं आऊंगी लौट के आपके पास, लेकिन तब जब मेरी और आपकी अगली मुलाकात का वक्त आएगा। फिलहाल चाहूंगी आपसे इजाजत, नमस्ते भारत से। अब मैं करती हूँ आप सभी को नमस्ते। मेरी और आपकी अगली मुलाकात तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी एक गीत ऐसे गुनगुनाते रहिए। अब से कुछ ही देर में हिंदी में समाचार, समाचारों के उस पार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: आकाशवाणी एफ एम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, 107.1 एफ एम रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के समाचारों की सुर्खियों पर। संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को स्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। श्राइन बोर्ड की आधिकारिक सूचना के अनुसार तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। श्रद्धालुओं को धैर्य रखने और श्राइन बोर्ड के आधिकारिक संचार माध्यमों से जारी सूचनाओं का पालन करने की सलाह दी गई है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। समाचारों में आगे है, राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्यवाही में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। DRI ने दिल्ली, मुंबई और पश्चिम बंगाल में अलग अलग कार्यवाही की। मुंबई में सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है। समाचारों के अंत में, ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना गोहेन को आगामी ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को ओपनिंग सेरेमनी के 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। आप बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो की प्रसारण सेवा के साथ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स 111।
2: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम अलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते ही हैं, हमारा ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। प्रधानमंत्री जी जिन विषयों का उल्लेख करते हैं, उन्हें और अच्छे से समझने के लिए, अपनी जानकारी उन विषयों के बारे में बढ़ाने के लिए हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है। इस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करते हैं अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को और उनके माध्यम से प्रधानमंत्री जी द्वारा उल्लेख किए गए उस विषय को, उन व्यक्तियों को, उन हस्तियों को हम और समझते हैं, उनके कार्य के बारे में हम और जानते हैं और इस तरह हम गहरे से जुड़ते हैं, अपनी जड़ों से अपनी संस्कृति को थोड़ा और अपनाते हैं। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने नालंदा विश्वविद्यालय की एक ऐसी पहल का उल्लेख किया जो अनुकरणीय है, जो बेहद प्रेरित करती है। किस तरह से हमारी जो परंपरागत शैक्षणिक विधियां थी, उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्जीवित कर रहा है, उन्हें प्रचलित कर रहा है और किस तरह से हमारे युवाओं को एक ऐसा मार्ग दिखा रहा है जो जीवन में आगे बढ़ने में हमें लगातार तैयार करता रहेगा, हमें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने नालंदा विश्वविद्यालय, शास्त्रार्थ की परंपरा और साथ ही आधुनिक भारत के जो बड़े बदलाव हैं उनका उल्लेख किया है।
3: साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद, संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
2: तो साथियों, सुना आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय की सराहना की है। और आइए अब मैं आपका परिचय करवा रही हूँ हमारे विशेषज्ञों से, जिनके माध्यम से हम इस विषय के बारे में आज और जानेंगे। आज हमें समय दिया है, हमारे स्टूडियो में आए हैं माननीय कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
4: नमस्कार।
2: हमारे साथ हैं श्री प्रेम शंकर शर्मा जी। आप जाने माने संस्कृत विद्वान हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं। पूर्व में PCS अधिकारी, अपर जिला अधिकारी के रूप में आप सेवानिवृत्त हुए हैं इलाहाबाद से। प्रेम शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
4: धन्यवाद नीलम जी।
2: और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील जोशी। आप सहायक आचार्य हैं संस्कृत विभाग हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद नीलम जी।
2: मैं सबसे पहले श्रीनिवास सर आपसे ये जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी के उद्गार हमने यहाँ पर सुने, इसमें ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं जो नए लगते हैं, लेकिन ये भी हमें पता है कि वो हमारी संस्कृति का ही हिस्सा रहे हैं और हमें लगातार वो प्रेरित करते रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने शास्त्रार्थ की जिस परंपरा का उल्लेख किया है वो असल में क्या है?
4: नीलम जी, इस विषय में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं
2: जी,
4: जिन्होंने अपने मन की बात में हमारी पारंपरिक शास्त्र विरासत की एक बहुत बड़ा सराहना की उन्होंने
2: जी।
4: भारत देश में हमेशा संवाद के लिए बहुत बड़ा स्थान रहा है। शास्त्रार्थ यानी संवाद
2: जी,
4: वाद कथा इसको हम बोलते हैं। जब किसी विषय पर निर्णय करना हो, अनेक मत हो, उन सारे मतों को सामने रखते हुए एक मध्यस्थ को बीच में रख के शास्त्रार्थ करते हैं, अपने अपने मत को सब रखते हैं, उसके बाद जो संवाद के बाद जो निर्णय होता है वो मध्यस्थ उस निर्णय को बताते हैं। तो इस व्यवस्था को हमने शास्त्रार्थ नाम दिया है
2: जी।
4: हमारी परंपरा में इसको वाक्यार्थ भी बोलते हैं, वादार्थ भी बोलते हैं और वाद कथा भी, संवाद भी, ये समानार्थक शब्द है। हमारी शास्त्रीय परंपरा में आज भी वो जीवित परंपरा है। आज भी व्याकरण, न्याय, मीमांसा, वेद भाष्य और द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैत की परंपरा में द्वैत और अद्वैत के अनेक विमतियों को निश्चय करने के लिए शास्त्रार्थ आज भी करते हैं
2: जी।
4: लेकिन ये परंपरा केवल एक पारंपरिक व्यवस्था का अंग रहा है। इसको पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस शास्त्रार्थ परंपरा को उज्जीवित करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को सराहना की है। उसके द्वारा उन्होंने इस व्यवस्था को पूरे राष्ट्र का एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था का अंग के रूप में उन्होंने स्वागत किया है, इसलिए मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है।
2: जी डॉक्टर सुनील जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बदलते दौर में बहुत सारी नई चीजें हम अपने आसपास लगातार घटित होते हुए देख रहे हैं और युवाओं के जीवन का ये हिस्सा भी बनते जा रहे हैं, जैसे कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन साथ ही एक चुनौती ये भी है कि हम अगर अपने पांडुलिपियों की बात करते हैं, अगर हम अपने उपनिषदों, शास्त्रों और प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण की बात करें, अपने वेदों की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि AI इसमें किसी तरह सहायक सिद्ध हो सकती है या ये एक चुनौती है जो हमारे इन प्राचीन जो संपदा है इसका ह्रास करेगी?
5: जी नीलम जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया पांडुलिपि से संबंधित। देखिए, भारत की जो समृद्ध ज्ञान परंपरा है, जो हमारी बौद्धिक जो परंपरा है, उसका जो संरक्षण है वह तो पांडुलिपियों में संरक्षित है ही।
2: जी
5: हम जानते हैं कि जो पांडुलिपियां हैं केवल मात्र हाथ से लिखे हुए कोई पुराने दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता की अक्षुण्ण जीवन स्मृति वो हैं, और उनको ताम्र पत्र पर, भोज पत्र पर, वस्त्रों पर लिखा गया है, और आज भी उनसे जो ज्ञान संपदा का जो विस्तार हो रहा है, निश्चित रूप से हम उसके द्वारा भावी पीढ़ियों को उस सुरक्षित ज्ञान के संवहन के लिए हम निरंतर प्रेरित कर रहे हैं। और जहां तक प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि किस प्रकार से इस ज्ञान परंपरा को और अधिक दृढ़ भूमिका दे सकती है, तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे अच्छी बात यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं जो कि धुंधली हैं या जो क्षतिग्रस्त हैं, उन पांडुलिपियों की उच्च गुणवत्ता वाली जो डिजिटल रिस्टोरेशन की जो बात है वो आसानी से हो सकती है, जिसमें AI जो है इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक के द्वारा उन पांडुलिपियों को डिसाइफर कर सकता है, और अनेक लिपियों में जैसे कि ब्राह्मी है, शारदा है, सिद्धम है, या नंदीनागरी है, या द्रविडियन भाषाओं में या द्रविडियन लिपियों में जो लिखी गई पांडुलिपियां हैं उनको डिसाइफर करके स्वचालित पहचान के द्वारा एक डिजिटल पाठ तैयार कर सकता है, जिससे कि

0: लाखों पृष्ठों का जो है डिजिटलाइज वर्जन हमारे सम्मुख उपस्थित हो सकता है। तो इस दृष्टि से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो निश्चित रूप से पांडुलिपियों के संरक्षण, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और कैटलॉगिंग के लिए बहुत सहायक हो सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता में जो ज्ञान भारतम जैसा एक मिशन जो स्थापित हुआ है, निश्चित रूप से उसमें अभी लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स देश भर से जो हैं संग्रहित हुई हैं, और जो विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते हैं या जो भाषा विज्ञान पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए एक अनुपम धरोहर है अनुसंधान के लिए। और इसी से देखिए हमारा नवाचार विस्तृत होगा और भारत की ज्ञान संपदा विश्व भर में प्रसारित होगी।
1: जी, तो इस तरह से AI सहायक है। जी,
0: निश्चित रूप से।
1: जी, मैं प्रेम शंकर जी आपसे अब जानना चाहूंगी, जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो विद्यालयों में हम सबका जुड़ाव तो रहा ही है, आरंभिक चरण में, अपनी शिक्षा के आरंभिक चरण में हम सभी संस्कृत पढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थी जो है वो आगे भी इसकी पढ़ाई जारी रखते हैं और कुछ 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा के बाद छोड़ देते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, जब हम शास्त्रार्थ की बात करते हैं तो क्या ये केवल संस्कृत भाषा से जुड़ा है, और जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है इसमें क्या मूल अवधारणा रही है, जो प्राचीन साक्ष्य है, क्या इस बारे में कुछ मिलते हैं हमें?
2: असल में शास्त्रार्थ अपनी बहुत प्राचीन परंपरा का एक अंग रहा है हमारे।
1: जी,
2: जिसमें शास्त्र कहते हैं ऐसा ज्ञान जो कि प्रमाणित हो, जो कि ग्रंथों में, स्मृतियों में, पुराणों में जिनका उल्लेख मिलता हो, वो ज्ञान। उस ज्ञान के कहीं अगर विरोधाभास होते हैं तो उसके संबंध में लोग अपना शास्त्रार्थ के माध्यम से अपना व्याख्यान उसमें प्रस्तुत करते हैं। और जैसा कि कुलपति जी ने थोड़ी पूर्व में बताया था, उसके बाद जो सर्वोत्तम निष्कर्ष होता है, सर्वोत्तम मत जो होता है या तर्क संपन्न जो होता है, उस पर एक निर्णय हो जाता है। ये शास्त्रीय परंपरा हमारी, शास्त्रार्थ की परंपरा शास्त्रीय परंपरा ही है एक तरह से, जो कि प्राचीन काल से चली आ रही है। और बल्कि कहना चाहिए कि ये, मैं तो ये मानता हूं कि गांवों में जो पंचायत जो चला करती थी वो भी उस शास्त्रार्थ परंपरा का ही एक रूप है, क्योंकि उसमें अनेक लोग बैठते थे, कम से कम 5 तो बैठते ही थे, लेकिन पंचायत में 5 के अतिरिक्त ये नहीं था कि वो छठा व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो वो एक खुला मंच होता था गाँव में भी, और अपनी अपनी बात रखते थे और सत्य के निर्णय पर सब एक मत होकर के पहुंच के उसको पूरा समाज उसको मान्यता देता था। तो ये बहुत प्राचीन परंपरा है, और जो आज भी हम लोकतंत्र के रूप में, प्रजातंत्र के रूप में, हम उसका आज भी पल्लवन और पुष्पन देख रहे हैं।
1: जी,
2: और ये शास्त्रार्थ सदैव जीवित रहेगा। और ये प्रधानमंत्री जी के जो मुख से निसृत हुआ है,
1: जी,
2: उसके आधार पर तो मैं समझता हूँ कि अब इसके विशेष रूप से ज्यादा बल दिए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि उन्होंने अन्य विश्वविद्यालयों से इस संबंध में प्रार्थना की है कि वो भी AI और उसके माध्यम से, शास्त्रार्थ के माध्यम से, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय ने प्रयास किया है, उस तरह से अन्य विश्वविद्यालय भी उस तरह का अपना योगदान करें।
1: जी, यानी केवल भाषा से इसका संबंध नहीं है, शास्त्रार्थ का मतलब है किसी विषय के बारे में अपना मत रखना और जो सर्वोत्तम पद्धति है उसे स्वीकार करना।
2: जी,
1: मुझे याद आ रहा है कि जब हम कॉलेज में थे तब भी हमारे यहाँ अलग अलग अवसरों पर जब कॉम्पिटिशन्स होते थे, प्रतिस्पर्धाएं होती थी, तो डिबेट भी उसमें एक प्रतिस्पर्धा होती थी, और एक विषय के पक्ष में और विपक्ष में हम बोलते थे, फिर उसमें विजेता विद्यार्थी जो है उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता था। तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि शायद इसी परंपरा को जीवन किया जा रहा था।
3: लेकिन उसमें एक जोड़ना चाहता हूँ, भारत में शास्त्रार्थ व्यवस्था में एक पद्धति विकसित की गई है।
1: जी,
3: आज जो केवल डिबेट होता है उसमें केवल पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के रूप में तो अपनापन रखते हैं।
1: जी,
3: ये युक्ति के आधार पर निर्णय हो सकता है, लेकिन हमारी परंपरा में शास्त्रार्थ कैसे करना है, कैसे प्रस्तुति रखनी है, जैसे आज के कोर्ट में, न्यायालय में कोई पद्धति है, उसी तरह का प्राचीन पद्धति है, उसको शास्त्रार्थ पद्धति बोलते हैं। उस पद्धति में यदि किसी के मत हराना है, उसको हराना नहीं माना जाता था, उस मत के ऊपर उनको आक्षेप जितना करना है, कैसे करना है, प्रमाण क्या देना है, युक्ति क्या देनी है, युक्ति का बल कितना है, प्रमाण का बल कितना है, ये सारा निर्णय का अंग होता था।
1: जी,
3: तो निर्णायक भी उसको ठीक से जानते थे, और जो पूर्व पक्ष के व्यक्ति, उत्तर पक्ष के व्यक्ति अपने मत को जब स्वीकार करते थे दूसरे मत को,
1: जी,
3: तो एक स्पर्धा नहीं थी।
1: जी,
3: ये सत्यान्वेषण का मार्ग था।
1: जी, यानी जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसकी खोज सब मिलकर कर रहे हैं।
3: जी,
1: और इसमें मतभेद हो सकता था, मन भेद नहीं था, व्यक्ति का सम्मान जो है वो बना रहता था। जी, यहाँ सर मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगी।

0: लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का गाना मैं श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
1: संस्कृत के गाने मुझे बहुत पसंद है
0: जी।
1: वैसे हिंदी के गाना भी सुनते हैं, लेकिन मेरे विश्वविद्यालय के गाने में एक जो पद्य है बहुत सुंदर पद्य है, जो हमारे नवाचार को अपने आप में एक प्रतिबिंबित करता है। मुझे लगता है कि संस्कृत गानों को भी हमारे युवा लोग सुनना चाहिए। इस दृष्टि से एक इस गाने का इस भाग को मैं आपको उपहार के रूप में देना चाहता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, हम ये अपने श्रोताओं को जरूर सुनवाएंगे।

0: तो इन मीठे से शब्दों के साथ ही जो गूढ़ अर्थ है इनका, उन्हें स्वीकार करने के साथ ही मैं एक बार फिर से आप सभी का पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं अपनी प्राचीन शास्त्रार्थ पद्धति की और साथ ही जो नई तकनीक हमारी शिक्षा पद्धति में जुड़ी है उनकी बात भी हम कर रहे हैं। कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं माननीय कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी, हमारे साथ हैं श्री प्रेम शंकर शर्मा, आप जाने माने संस्कृत विद्वान हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील जोशी, आप सहायक आचार्य हैं हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के। अब सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया कि AI को हम अपना तो रहे हैं और हमारे युवा जो हैं उनका काम बहुत हद तक अब डिपेंड करता है AI पर, वो उसकी मदद लेते हैं अपने काम में, लेकिन एक ये चुनौती भी है कि हम अपनी क्रिएटिविटी ओरिजिनल थिंकिंग को कैसे बचाए रख सके, तो इसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या भूमिका निभा सकती है, हमारे विद्यालय क्या ऐसा कर सकते हैं, हमारा समाज ऐसा क्या कर सकता है कि हमारी रचनात्मकता जो है वो भी बची रहे और साथ ही नवाचार को लेकर हम आगे बढ़े।
1: देखिए, मानव की इस यात्रा में जब नई नई टेक्नोलॉजी आते हैं उसमें हम प्रवेश करते हैं, हमेशा एक चैलेंज रहा है। जैसे हमारे हाथों से जो करते थे वो यंत्र बन गए, तो ये भी चैलेंज रहा है
0: जी।
1: और जब हम पादचरण के द्वारा यात्रा करते थे, वाहन आ गए हमारे, उसके बारे में भी चर्चा है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी के साथ मानव यात्रा का हमेशा एक संघर्ष दिखता है, लेकिन वो संघर्ष नहीं है, मानव कौशलता का विकास का एक भाग है वो। हम टेक्नोलॉजी छोड़ भी नहीं सकते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ संघर्ष भी नहीं कर सकते
0: जी।
1: तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि AI टेक्नोलॉजी में प्रवेश करने के बाद मानव अपने आप को दूसरे ढंग से अपना कौशल का विस्तार करेगा
0: जी,
1: बुद्धि का विस्तार करेगा। लगता है शुरुआत में ये हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन जिसके साथ हम स्नेह करेंगे उसके साथ हम जीना भी सीखेंगे, साथ ही हम अपनापन को मानव ने कभी छोड़ा नहीं आज तक। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में AI हमारे साथ रहेगी। जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे आ गई, क्या आज भी मानव निर्मित सुंदर कलाकृतियों के बारे में कोई प्रश्न है क्या? डिजिटल टेक्नोलॉजी में उसका एक नयापन मिला है
0: जी।
1: आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कई चित्रकार अच्छे अच्छे नए चित्र लिखते हैं। अब टेक्नोलॉजी आया है साउंड का, अकोस्टिक का, उसके साथ अच्छे गाने भी आए हैं
0: जी।
1: और इसलिए मुझे लगता है कि कभी भी मानव का जो कलात्मकता है और प्रतिभा है उसके लिए सारी टेक्नोलॉजी हमारे लिए अनुकूल बनेंगे, कभी विरोधी नहीं बनेंगे
0: जी।
1: लेकिन एक जो है उसको सीखने का और उसके साथ जीने का मन करना होगा और उसका संयम के साथ उपयोग करना, क्योंकि मैं मानता हूं AI टेक्नोलॉजी जैसे कि अभी हमारे सामने जो आया है बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजियों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैं इसको ब्रह्मराक्षस मानता हूं। यदि ब्रह्मराक्षस को आप अपने वश में रखे
0: जी,
1: बहुत ही काम करेगा वो आपके लिए। लेकिन ब्रह्मराक्षस यदि आपका वश में नहीं है आपको खा जाएगा
0: जी।
1: तो सोचना पड़ेगा उसका उपयोग करने से पहले। तो इस दृष्टि से मुझे आज ये वरदान है, हम ऐसा युग में जी रहे हैं, पूरी दुनिया में किसी सभ्यता ने इसको देखा नहीं था। वंडरफुल, इसके साथ करना चाहिए।
0: और बहुत ही प्यारी बात आपने कही कि हम जिससे प्रेम करेंगे उसके साथ एक सामंजस्य भी होगा, उसके साथ हम जीना भी सीखेंगे और हमारी बुद्धि का विस्तार होगा इससे, अगर हम चाहें तो। यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी सर, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और

0: डेटा साइंस में बीटेक शुरू करने की पहल की है, तो आप शिक्षा व्यवस्था में इसे कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन मानते हैं, ऐसा क्यों किया गया है?
1: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको खासकर उल्लेख किया है, इसलिए नहीं है कि बीटेक भारत में पहली बार शुरू हो रहा है।
0: जी,
1: बीटेक पाठ्यक्रम भारत में कई संस्थानों में है।
0: जी,
1: लेकिन उसके पीछे रहा हुआ उद्देश्य के बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने एक उल्लेख किया है। वो उल्लेख ये है कि तकनीकी व्यवस्था को हमारी भाषाओं के साथ, हमारी प्राचीन ज्ञान धरोहर के साथ जोड़ने का प्रयास, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीटेक AI और डेटा साइंस ये पाठ्यक्रम ही क्रांतिकारी नहीं है अपने आप में, लेकिन AI टेक्नोलॉजी को हमारे प्राचीन ज्ञान परंपरा के साथ, भारतीय भाषाओं के साथ, संस्कृत के साथ जोड़ने का प्रयास पहली बार हो रहा है।
0: जी,
1: ये कार्य कोई IIT नहीं कर रहा है, एक संस्कृत विश्वविद्यालय कर रहा है। पहली बार संस्कृत विश्वविद्यालय अपने पारंपरिक क्षेत्र से बाहर एक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का प्रयास, साथ ही भारतीय भाषाओं के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ने का प्रयास जो कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस उद्देश्य को देखा है।
0: जी,
1: मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस विशेषता को आपने देखा और उल्लेख किया, मन की बात के द्वारा पूरे दुनिया को इस विषय को पहुंचा दिया।
0: जी,
1: ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, बार बार माननीय प्रधानमंत्री उसको उल्लेख करते हैं, संस्कृत केवल भाषा मात्र नहीं है, एक ज्ञान की धारा है, उसको जीवन के सभी अंगों में सभी डिसिप्लिन के साथ जोड़ने का आवश्यकता है। उसको मानते हुए उसमें हमने एक प्रयास किया है, हमने आधुनिक तंत्र ज्ञान के साथ जोड़ा है इस कार्यक्रम के द्वारा, भारतीय विधि शास्त्र के साथ जोड़ा है, आयुर्वेद के साथ जोड़ा है और सिविल सर्विस स्टडीज के साथ जोड़ा है। तो कुल मिलाकर भारत के जितने भी हमारे विभिन्न क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में संस्कृत को जोड़ने का प्रयास केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कर रहा है, उस दिशा में ये भी एक प्रयास है बीटेक कार्यक्रम, जिसमें AI टेक्नोलॉजी को केवल संस्कृत नहीं सभी भारतीय भाषाओं के माध्यम में हम जोड़ना चाहते हैं। इसमें दोनों तरह के छात्रों को भाग लेना होगा, जिसमें संस्कृत और भारतीय भाषा जानते हो, साथ में टेक्नोलॉजी जानते हो। आने वाले दिनों में लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वो संस्कृत और भारतीय भाषा आश्रित लार्ज लैंग्वेज मॉडल होंगे।
0: जी,
1: उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने का बहुत बड़ा एक उद्यम हम जो शुरू कर रहे हैं, उसके लिए पूरे शिक्षा मंत्रालय का समर्थन है, पूरे भारत सरकार का समर्थन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का समर्थन है, और आपके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने इसको आगे बढ़ाया है।
0: जी, तो ये आने वाले कल की तैयारी है। जी, डॉक्टर सुनील जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम दीक्षांत समारोह अक्सर सुनते हैं और ऐसा लगता है कि ये विद्यालय विश्वविद्यालयों में अब केवल डिग्री वितरण समारोह है। मैं आपसे हमारी शिक्षा परंपरा, भारतीय शिक्षा परंपरा में दीक्षांत समारोह का वास्तविक स्वरूप क्या था, इसका महत्व क्या है, ये जानना चाहूंगी।
2: बहुत अच्छा प्रश्न किया नीलम जी आपने। देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा में जो कि इतनी समृद्ध है, विशाल है, विराट है, उसमें उपनिषद कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वही है जो मनुष्य को अज्ञान से, भय से, अहंकार से और संकीर्णताओं से मुक्त करे। तो इसी की जो प्रबल भावना है वह हमारे दीक्षांत में हमें प्रकट होती है, क्योंकि भारतीय शिक्षण पद्धति में जो दीक्षांत समारोह है वह केवल शिक्षा समाप्ति का कोई विशेष उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति नए दायित्वों के अध्यायों का एक शुभारंभ है। इसीलिए हमारे गुरुकुलों में अध्ययन की समाप्ति नहीं होती है, बल्कि दीक्षा के पूर्ण होने से जो विद्यार्थियों में ज्ञान, चरित्र, अनुशासन, सेवा और जो लोक मंगल के जो संस्कार हैं उनका प्रतिष्ठापन किया जाता है। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि प्राचीन भारत में जब विद्यार्थी गुरुकुलों में पढ़ते हैं तो वो वेद सहित, चतुर्वेद सहित षडंग की वो विद्या को प्राप्त करते हैं, दर्शन शास्त्र में प्रवीण होते हैं, राजनीति हो चाहे शिल्प शास्त्र उसमें प्रवीण होते हैं, और इन सभी परीक्षाओं में सफल होने के उपरांत वे समाज में जो प्रवेश करने की जो अनुमति है उसको गुरु से प्राप्त करते हैं, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम के उपरांत वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो आश्रम प्रवेश की भी अनुमति इसमें मिलती है। और विशेष रूप से दीक्षांत समारोह के संदर्भ में जब ये आयोजन किया जाता है समावर्तन संस्कार के उपरांत, तो तैतरीय उपनिषद की जो शिक्षावल्ली है वहां पर गुरु जो है वो शिष्य को बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान्मा प्रमद, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव।

0: ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी कि व्यक्तित्व परिवर्तन करना, और एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे कि वह व्यक्ति भी ऋषि, परमर्षि, महर्षि, देवर्षि, राजर्षि की कोटि में अपने आप को रखे। तो ये एक आदर्श युक्त जीवन शैली जो हमें शिक्षा से मिलती है, उसी की ये एक मूल भावना हमें दीक्षांत समारोह के अवसर पर देखने को मिलती है। जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020, उसमें भी इसी भारतीय दृष्टिकोण को पुनर्स्थापित करने का जो प्रयास है, उससे राष्ट्र निर्माण का और जीवन को जीने का एक महत्वपूर्ण जो है वो अवसर है।
1: जी, महत्वपूर्ण अवसर है, और इसीलिए शायद इसमें दीक्षा शब्द जुड़ा है शिक्षा की बजाय, क्योंकि दीक्षा का अंत नहीं होता है। आप जितना गुरु का अनुसरण करते जाएंगे वो दीक्षा और गहरी होती जाएगी।
0: जी,
1: बहुत अच्छा आपने इसका विवेचन किया है यहाँ पर। अब मैं आपकी पसंद का एक गाना श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
0: एक बहुत ही मुझे प्रिय है एक गीत, प्रिय प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, जो कि हम तुम और वो फिल्म से है और जिसको गाया है किशोर कुमार जी ने।
1: जी, और ये क्यों पसंद है आपको?
0: क्योंकि इसमें जो शब्दावली है वो संस्कृत परिनिष्ठित है, तो इस कारण से मुझे बहुत प्रिय है।
1: जी, इस गीत की विशेषता यही है। तो लीजिए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना।
2: प्रिय

0: सही राह पर लेकर आगे बढ़े और हम विकसित भारत के लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं तो हमारे युवाओं का भी इसमें लगातार योगदान बना रहे, ये प्रेरणा हमें प्रधानमंत्री जी ने दी है मन की बात में उल्लेख करके नालंदा विश्वविद्यालय का। मैं प्रेमशंकर जी आपसे ये जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी ने और भी इसमें कई शब्द बोले हैं, प्रधानमंत्री जी ने पुरुष सूक्तम का जिक्र किया है, श्री सूक्तम है, श्री रुद्रम है, दुर्गा सूक्तम है, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी कि थोड़ा विस्तार से आप हमें ये समझाएं।
1: धन्यवाद नीलम जी। प्रधानमंत्री जी ने जो सूक्तम का जो उल्लेख किया है
0: जी,
1: वो हमारी प्राचीन जो वैदिक संपत्ति है
0: जी,
1: जो वेद हैं हमारे, जो मंत्र हैं, उनका उल्लेख करके, क्यों वही सूक्त हैं। सूक्त का अर्थ है जो उत्तम बात कही गई हो, वो है सूक्त
0: जी।
1: ये हमारा जो प्राचीन ज्ञान है वो किस कारण से, देखिए एक तो है वेद, उनको श्रुति कहा जाता है
0: जी।
1: वो कहीं लिखे नहीं गए थे, वो केवल स्मृति के आधार पर सुन सुन करके लोगों ने याद किए थे, वो किसी के द्वारा रचे नहीं गए थे, इसीलिए वो, और वो सब के सब क्या हैं, वो मंत्र हैं
0: जी।
1: और मंत्र क्या है, वो मंत्र हैं, वो छंद हैं, क्योंकि छंद भी जो है वेदों का एक अंग है, छंद पादौ तु वेदस्य
0: जी।
1: छंद जो है वेद का जो है वो चरण है, उनके बिना ज्ञान नहीं चल सकता, इसीलिए ये छंद। और ये आश्चर्य की बात है कि हमारे वेद सबको मंत्र याद रहे, उसका कारण ये है कि वो छंदोबद्ध थे, छंदों में थे, और वो छंदों को याद रखना आसान होता है और गद्य का याद, इसीलिए आप हमारे हिंदी के गीत जो हैं, चूंकि वो छंदोबद्ध हैं
0: जी,
1: इसलिए वो सबको हृदयंगम भी हो जाते हैं और सबको पसंद भी आते हैं, और इसीलिए इतना पुराना हमारा जो ये ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, वो छंदोबद्ध होने के कारण ये आज तक हमें प्राप्त होता है। इनमें से ही ये मंत्र हैं
0: जी,
1: जिनको कि श्री सूक्तम कहा गया है, ये श्री सूक्तम, ये श्री कहा गया लक्ष्मी जी के लिए, और पुरुष सूक्तम कहा गया नारायण, लक्ष्मी और नारायण
0: जी।
1: तो हमारे यहाँ तीन देव की कल्पना की गई है, ब्रह्मा विष्णु और महेश
0: जी।
1: तो ये तीन जो वो हैं, तो तीन बिना शक्ति के कुछ नहीं कर सकता, तो इनकी ये शक्ति रखते हैं, इनके साथ शक्ति जुड़ी हुई है, तो नारायण के साथ लक्ष्मी जी की शक्ति जुड़ी हुई है, क्योंकि ये कहा भी गया तीनों परमात्मा एक ही है, लेकिन वो तीन रूपों में कार्य करता है। तो वो कैसे, रजो जुषे जन्मन सत्वव्रतये सितौ प्रजानाम प्रलय तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थित नाश हेतवे त्रयी मयाय त्रिगुणात्मने नमः
0: जी।
1: यानी परमात्मा जो है त्रिगुण स्वरूप है, उसमें तीनों शक्तियां हैं, यानी जन्म सृष्टि करने की और पालन करने की और संहार करने की, वो शक्ति संपन्न होने के कारण ये सब करता है
0: जी।
1: तो ये श्री सूक्तम जो लक्ष्मी जी का सूत्र है और पुरुष सूक्तम जो है नारायण के सूत्र हैं, तो ये जो है ये प्रार्थना और स्तुतियों में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसे ही रुद्र भगवान के जो है वो रुद्र सूक्तम है, देवी जो सूक्तम है वो देवी महात्म्य है
0: जी।
1: तो इस तरह से ये चूंकि मंत्र होने के कारण ये पठनीय हो रहते हैं और श्रवणीय भी रहते हैं और याद भी रहते हैं
0: जी,
1: और ये फल भी देते हैं
0: जी। तो स्तुति का माध्यम है ये,
1: हाँ स्तुति के माध्यम है, क्योंकि मंत्र हमारे जो वेद मंत्र हैं ये सब परमात्मा की स्तुति के, प्रार्थना ही ज्यादातर वेदों का मुख्य अंग रही है और मंत्रों का प्रमुख अंग प्रार्थना ही रही है, स्तुति ही रही है
0: जी। यानी हम आम भाषा में समझ सकते हैं कि पुरुष सूक्तम जो है वो विष्णु जी की आराधना का एक माध्यम है, श्री सूक्तम लक्ष्मी जी की
1: जी,
0: और श्री रुद्रम जैसा कि नाम से ही प्रकट होता है शिव जी को समर्पित है, और दुर्गा सूक्तम ये हम देवी की आराधना
1: जी का
0: जी। बहुत अच्छे से आपने हमें बताया। मैं श्रीनिवास सर आपसे ये जानना चाहूंगी, अब हम अक्सर सुनते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और ये कहा जाता है कि भारतीय ज्ञान पद्धति भी और हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो भी विश्व को हमेशा ही अपनी ओर आकर्षित करती रही है, और हम वैश्विक जो पद्धतियां हैं उन्हें समाहित भी करते रहे हैं अपनी संस्कृतियों में, और कुछ ना कुछ ऐसा है कि दुनिया हमें आश्चर्य से भी देखती है लेकिन प्रशंसा से भी देखती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारतीय संस्कृति में ऐसा कौन सा वैश्विक आकर्षण है कि भाषा, भौगोलिक दूरी और सांस्कृतिक भिन्नताओं की सीमाओं को भी सहजता से पार कर जाता है। क्यों दुनिया हमारी प्राचीन संस्कृति को इतना मानती है कि हमारी भाषा जो है वो आज विदेशों में पढ़ाई जा रही है, बहुत सारे देश हैं संस्कृत वहां पर एक विषय है, वहां के बच्चे पढ़ते हैं, और हमारी संस्कृति के बहुत सारे हिस्से, हमारे जीवन यापन के दिनचर्या की बहुत सारी जो पद्धतियां हैं वो भी उनके जीवन यापन का हिस्सा है।
2: नीलम जी, एक बहुत गहरा प्रश्न है ये
0: जी।
2: इसमें जैसे आपने कहा भारतीय संस्कृति और सभ्यता

गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हम अपने विशेषज्ञों के माध्यम से अपनी प्राचीन शिक्षा पद्धति और समृद्ध भारतीय परंपराओं को जान रहे हैं, साथ ही हम ये भी पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे युवा शक्ति को और ऐसा क्या दिया जा सके कि वो जो ऊर्जा है उसे एक

0: एक आकर्षण का केंद्र रहा है। दुनिया में भारत की सभ्यता का विशेषता क्या है, वो यह है कि प्रकृति के साथ हमारा जीवन है, प्रकृति से दूर नहीं है, हम प्रकृति से विरुद्ध नहीं भी नहीं गए हैं। दूसरी बात, विश्व कल्याण के लिए सोचा गया है, भाव शुद्धि भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा अंग रहा है। विश्व कल्याण प्रार्थना के साथ विश्व शांति के लिए, देखिए आज भी भारत किसी देश के विरोध में कभी भी आक्रमण नहीं किया है
1: जी,
0: यह इतिहास का भाग रहा है। इतिहास में भारत के ऊपर आक्रमण हुआ है लेकिन भारत ने किसी देश के विरुद्ध में आक्रमण नहीं किया है। हमने हमेशा ये सोचा है कि पूरे वसुधैव भी हमारा कुटुंब है, परिवार में हम आक्रमण नहीं करते हैं, परिवार के प्रति हम एक बंधुत्व भाव रखते हैं। इस स्नेह भाव से हमने जिया है, प्रकृति के साथ जिया है, पूरे विश्व के सभी के साथ सोदर भाव से जिया है, मित्रता के साथ जिया है और सभी के अच्छाइयों को हमने स्वागत किया है। आनो भद्रा कृतोयन्तु विश्वतः, दुनिया के सभी जगह से सभी दिशाओं से हम अच्छे विचारों को आचारों को स्वागत किया है, हमने हमेशा सीखा है
1: जी।
0: इसलिए दुनिया हमसे अपेक्षा करती है कि हमारे जीवन पद्धति को दुनिया ने भारतीय सभ्यता को एक आदर्श मानकर अपने आप ये विश्व गुरुत्व दिया है। मुझे लगता है कि यही विशेषताएं हैं, भारत की सभ्यता का विशेषताएं हैं। हमारी संस्कृति अलग नहीं है, हमारे जीवन से अलग नहीं है, हमारे जीवन ही एक सांस्कृतिक जीवन है
1: जी।
0: संस्कृति यानी प्रकृति से दूर जब होता है तो संस्कृति नहीं होती है, वो विकृति हो जाती है। आज भी भारतीय जीवन पद्धति यदि देखेंगे वो प्रकृति के साथ जुड़ा है। हमने भी कई देशों से कई विदेशों से आचरण व्यवहार को लिया है लेकिन आज भी हमारा 3000 साल के बाद भी हमारी सभ्यता का जो अनेक विशुद्ध आचरण बचते हैं इसका कारण है हमने उससे बहुत दूर नहीं गए। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी कारण है, कभी भी हम रिजिड नहीं रहे हैं। हम किसी मत पर, हमारा मत नहीं है, हम एक जीवन का धर्म लिया है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि संस्कृति का और एक भाग है संस्कृत। हमने ये भी माना है कि हमारी भाषा के द्वारा हम संस्कृति हमने रिटेन किया है
1: जी।
0: भाषा लुप्त, देखिए आज हमारी इतनी भाषाएं हैं लेकिन भारत एक रहा है। यूरोप में भाषाएं बदली है, संस्कृतियां बदली है, देश भी बदले हैं लेकिन भारत में इतनी भाषाओं के बावजूद, इतने आचरण के बावजूद, इतने मतों के बावजूद भारत एक रहा है। कारण, क्योंकि यहाँ एक संस्कृति और एक विशुद्ध विचार जो विश्व कल्याण के हो, विश्व शांति के हो, तो यही बहुत बड़ी भूमिका निभाती है
1: जी। और हम बहुत ही गर्व के साथ ये बात कहते हैं कि हमारी ये संस्कृति है जो सबसे पहले विश्व शांति की कामना करती है और हम वो संस्कृति हैं जहाँ हमारे श्लोक जो हैं, हमारे वेद पुराण हमें वनस्पति और पूर्ण ब्रह्मांड की शांति की कामना करना भी सिखाते हैं, हमारी प्रार्थनाओं में ये शामिल है। तो बहुत अच्छे से आपने कहा कि हमारी जो संस्कृति है ये इसीलिए आकर्षक है क्योंकि इसमें सहज प्रवाह है और साथ ही विश्व शांति विश्व कल्याण की कामना है जी। तो प्रेम शंकर जी, यहाँ मैं आपकी पसंद का एक गाना श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
2: है प्रीत जहाँ की रीत सदा
1: जी,
2: मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये भारत का संदेश देने के लिए मनोज कुमार ने बड़ी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है और बड़ा ही प्रेरक वो बन पड़ता है और विदेश में ये गाना हुआ है
1: इस वजह से आप सुनवाना चाहते हैं जी। बहुत ही अच्छा सा गाना है, हम सभी सुनते हैं।
3: जब

गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम अपनी प्राचीन शिक्षा पद्धति को जान रहे हैं, आधुनिकता क्या है उसे समझ रहे हैं और हमारे युवाओं को आज किस प्रकार के मार्गदर्शन की जरूरत है ये भी हम अपने विशेषज्ञों के माध्यम से आज जान रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर सुनील जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन जो रहा और मन की बात का जो हिस्सा हमने सुना, उसमें एक

0: शब्द आया ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं।
1: जी निश्चित रूप से नीलम जी, प्रधानमंत्री जी ने जो ब्रह्म कमल डोमिनिकाना के विषय में बात की है वह स्पेनिश बोलने वाले लोगों का एक समूह है जो कि रिपब्लिकन डोमिनिकाना में है
0: जी।
1: और विशेष रूप से ये स्पेनिश बोलते हैं और ये भारतीय संस्कृति से इतने अधिक अभिभूत हैं और इतने अधिक इन्होंने श्रद्धा दिखाई है भारतीय संस्कृति के प्रति, जो कि हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का विषय है। और देखिए इसी कारण से भारतीय आध्यात्मिक परंपरा जो है वो आज भी हमें जीवंत दिखाई देती है विदेशों में। और इस प्रकार जब एक ये छोटा सा दल जो कि ब्रह्म कमल डोमिनिकाना के नाम से है, तो उन्होंने हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो संपूर्ण मानवता की जो साझा विरासत है, उसको बहुत सुंदर प्रकार से पूरे विश्व में प्रख्यापित करने का एक महनीय कार्य किया है। और इनके संदर्भ में एक विशेष बात यह है कि ये जो हमारी प्राचीन शास्त्र हैं उन शास्त्रों का ये जो है अनुसरण करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं और शुद्ध मंत्रोच्चारण करते हैं और मंत्र भी वैदिक मंत्रों का ये पाठ करते हैं। और विशेष रूप से दुर्गा सूक्तम और देवी महात्म्य जैसे देवी स्तुति परक मंत्रों का ये पाठ करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत से दूर जो देश है जहां पर भारतीय संस्कृति बहुत देर में गई, लेकिन यहाँ के लोगों ने अत्यंत ही भारत के प्रति सम्मान रखते हुए और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को साझा विरासत के रूप में मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का जो उन्होंने एक परिचय दिया है, निश्चित रूप से वो सीमाओं से परे जाकर भी भारत को विश्व में जोड़ने की जो एक अद्भुत क्षमता दिखाई है उसके लिए ये बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि ये वस्तुतः भारतीय जो कथाएं हैं जो कि मंत्रात्मक हैं, जो कि पौराणिक हैं, उनको मात्र ऐतिहासिक या पौराणिक संदर्भ में नहीं देखते हैं, बल्कि वो इसको एक जीवंत भारतीय दर्शन के रूप में अपनाते हैं। जैसे कि दुर्गा सूक्तम जो कि हम जानते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध है और मार्कंडेय पुराण का एक अंग है और तैत्तिरीय आरण्यक में भी यह प्राप्त होता है, वहां पर विशेष रूप से ये बात उपस्थित होती है कि ये जो वास्तविक जो शत्रु हैं वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और हिंसा हैं, ये अज्ञानात्मक नकारात्मक जो प्रवृत्तियां हैं इन्हीं को ही हमें इन सूक्तों के माध्यम से जो है समाप्त करना है और अपनी बाह्य जो है जगत में अपनी आंतरिक चेतना को प्रबल बनाना है और इन शत्रुओं पर जो हमें विजय प्राप्त करते हुए देवी की स्तुति के माध्यम से विवेक है, साहस है, करुणा है, आत्मबल है, धर्म की स्थापना करनी है। और इसी कारण से हम देखिए पूरे विश्व में ये कहने के लिए तत्पर होते हैं कि भारत जो है वो विश्व गुरु है, आध्यात्मिक संदेश देने वाला एक देश है और शक्ति की उपासना करने वाला एक देश है। तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो समय समय पर इस प्रकार के देश दुनिया में हो रहे भारतीय संस्कृति के प्रति कार्यों से हम सभी को अवगत कराते हैं
0: जी।
1: और निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति में जो देव उपासना है, देवी उपासना है, प्रकृति उपासना है, उसका परिचय हम सभी को विश्व भर में मिलता है
0: जी। और अगर हम देखें तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा वो रहा है, हमने घर परिवार में इस तरह की चीजें देखी हैं, ऐसी परंपराएं देखी हैं, हमारे पर्वों पर हम वृक्ष पूजन करते हैं, हमारे किसी ना किसी त्योहार से एक वृक्ष जुड़ा है, कभी वहां हमें दिया जलाना है, कभी जल अर्पित करना है, और प्राकृतिक उपादान जो है चंद्र की पूजा हो रही है, सूर्य देव की पूजा हो रही है, तो शायद ये भी हमें प्रकृति के प्रति आभारी बनाए रखने, कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जिसे हम आधुनिकता कहते हैं, इसमें हम ये चीजें कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद है कि वो हमें बार बार प्रेरित करते हैं कि हम ये परंपराएं जो हैं वो अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखें। मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, हम जब जिक्र करते हैं आधुनिकता का और हमारे युवाओं के पास अगर हम देखें तो एक सर ने कहा कि ब्रह्म राक्षस है हमारे पास में, कि बहुत सारी तकनीक है और ग्लोबल सिटीजन अब हम अपने आप को कहते हैं, हमारे पास तकनीक के माध्यम से सूचनाएं बहुत जल्दी पहुंचती हैं और बहुत सारे विकल्प भी हैं आगे बढ़ने के। ऐसे में आपको क्या लगता है कि हमारे युवा कैसे हम उन्हें अपनी परंपराओं से जोड़े रख सकते हैं, कैसे हम उन्हें आधुनिक शिक्षा पद्धति की जानकारी तो दें, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे विदेशों में भी जाकर पढ़ाई करें, वहां नौकरियां भी करें, हम चाहते हैं कि वो हमारी जीडीपी में एक अच्छी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, वो हमें फॉरेन करेंसी भी जो है वो देश में भेजें, लेकिन इन सब के साथ कैसे हम अपने बच्चों को अपने पर्वों का महत्व समझाएं, अपनी सनातन संस्कृति जो है उसकी

0: वैज्ञानिकता हम समझाएं। आप संस्कृत के विद्वान हैं लेकिन विज्ञान के आप स्टूडेंट रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी।
1: नीलम जी, बहुत अच्छा आपने इसके बारे में प्रश्न किया है। इसका मूल कारण ये है कि हमारे युवाओं को, आजकल के विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा से अवश्य जोड़ना होगा, क्योंकि ज्ञान का जो सर्वोत्तम पक्ष है वो संस्कृत में मौजूद है। संस्कृत ही हमारे जीवन को उस ब्रह्म तक पहुंचाने का एक साधन बनाती है। जैसे कि ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मागर्धः कश्चित् ब्रह्म। इस भारत देश के उपनिषदकार ने ये सबसे पहले कहा कि दूसरे की चीज को देख करके लालच मत करो, तो दूसरे की प्रगति को देख करके लालच मत करो, है ना। और ये भी तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा, यानी जो हमारे पास जो बैठा हुआ है उसका भी ध्यान रखो कि उसके लिए भी त्याग के साथ साथ आप भोग करो, मतलब त्याग भी करो। तो त्याग हमारे संस्कृति में बहुत, त्याग का बहुत महत्व रहा है, त्याग और तपस्या का। अगर इन चीजों से जुड़ना है तो संस्कृत को अपनाना होगा, क्योंकि ये सारे अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, ये तो संस्कृति सिखाती है और कोई भाषा तो ये सिखाती नहीं है। तो अगर इसीलिए विश्व भी आज संस्कृत की शरण में जा रहा है, योग की शरण में जाता है। योग क्या है? ये एक दर्शन है, षट दर्शनों में से एक दर्शन है। तो हमारे ये दर्शन क्या है? ये छह दर्शन जो है ये सूक्त रूप में ज्ञान का एक माध्यम है
0: जी।
1: सूत्र दिए हुए, सूक्त दिए हुए, उनके माध्यम से योग दर्शन में कैसे हम ब्रह्म को प्राप्त करें वो पूरा साधन दिया हुआ है। तो ज्ञान को प्राप्त करने का, ज्ञान का सदुपयोग करने का, ये हमारा संस्कृत सिखाती है, हमारी भाषा सिखाती है, हमारा साहित्य सिखाता है। तो इससे संस्कृत से हम जुड़े रहेंगे। और संस्कृत में एक खूबी बहुत बड़ी है
0: जी,
1: कि ये संसार की ऐसी भाषा है संस्कृत जो कि सबसे अधिक वैज्ञानिक है, सबसे शुद्ध और उत्कृष्ट इसका व्याकरण है
0: जी,
1: और सर्वोत्तम इसकी लिपि है। और जो आप लिख रहे हैं वही आप पढ़ते हैं, उच्चारण भी बिल्कुल वही है, जैसे कोई भी एक नुक्ता भी इसमें व्यर्थ का नहीं होता है
0: जी।
1: अगर उसे हटा देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। तो ये वास्तव में पूरी तरह से वैज्ञानिक और ईश्वर प्रदत्त कहना चाहिए ये भाषा है संस्कृत
0: जी।
1: तो संस्कृत से अगर हम जुड़े रहेंगे तो हमारे भविष्य देश का और संसार का भी, संसार को भी जोड़ना पड़ेगा। संसार भी जुड़ रहा है, क्योंकि वो ज्ञान जो मानवता का जो ज्ञान है
0: जी,
1: वो पशुत्व से ऊपर उठने का ज्ञान है, जिसमें मानव बन सके और देव बन सके
0: जी,
1: तो बिना संस्कृत के वो संभव नहीं है
0: जी।
1: क्योंकि वो हमारे उपनिषदों में और वेद मंत्रों में वो व्याख्यात है, और कहीं किसी पुस्तक को आप ढूंढ लीजिए कहीं वो चीज आपको नहीं मिलेगी
0: जी। यानी संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, चरित्र निर्माण का एक माध्यम है, और सांस्कृतिक जागरण जो है उसका एक सूत्र हम कह सकते हैं जी। प्रोफेसर श्रीनिवास, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, हम जब सांस्कृतिक जागरण की बात कर रहे हैं और हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का, जिसमें हर नागरिक को एक भूमिका निभानी है, ऐसे में हमारे विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति के रूप में क्या भूमिका निभा सकते हैं, वो कैसे सहयोग कर सकते हैं इसमें?
2: देखिये नीलम जी, विकसित भारत का निर्माण केवल एक अंग के विकास से नहीं होगा
0: जी।
2: उसमें बौद्धिक विकास भी है, उसमें आर्थिक विकास भी है, उसमें व्यक्तित्व विकसन भी है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अभी आज की शिक्षा एक एकांग या एक मुखी विकास का बात करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं
0: जी,
2: वो संपूर्ण विकसित भारत का है। उसमें केवल शिक्षा से एक जॉब, जॉब से अर्थ, अर्थ से जीवन, ये नहीं है
0: जी।
2: सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। हमने एक मिसिंग पॉइंट आज के शिक्षा में हुई है, सुख का मूल क्या है? लोगों से पूछेंगे तो बताएंगे अर्थ है, मनी है। मनी के मूल क्या है? जॉब है। जॉब के लिए क्या करना है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। एग्जाम के क्या करना है? तैयारी करनी है
0: जी।
2: तो हमारी शिक्षा क्या हो गई है? जॉब के लिए तैयारी करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा जॉब करना है, जॉब से अर्थ मिलेगा, अर्थ से सुख मिलेगा। यहाँ बहुत सारे मिसिंग लिंक्स हैं। उसमें महत्वपूर्ण ये है कि कौटिल्य ये कहता है कि सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। सुख का मूल धर्म है। समाज में धर्म जब रहेगा तभी सुख मिलता है, सबके लिए सुख मिलेगा, स्वार्थ नहीं है
0: जी,
2: सबके लिए सुख। उसके बाद धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ चाहिए, लेकिन केवल अर्थ से सुख नहीं मिलेगा, धर्म के द्वारा ही मिलेगा
0: जी।
2: तो आज दुनिया में मिसिंग लिंक को भारत को सिखाना है। इसका मतलब है विकसित भारत केवल अर्थ से विकसित

0: भारत नहीं होगा, संसाधनों से विकसित भारत नहीं होगा, आध्यात्मिक समृद्ध और संपूर्ण भारत आत्मनिर्भर जब होगा तभी विकसित भारत होगा। तो इसमें आत्मनिर्भरता भी है, समृद्धि भी है और आध्यात्मिकता भी है
1: जी।
0: तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में इस तीनों का समावेश होना चाहिए। हम केवल ज्ञान की बात करते हैं और सीधा अर्थ से व्यवस्था से जुड़ते हैं, नहीं। आज हमें आध्यात्मिकता को हमारी भारतीय विरासत, भारतीय परंपरा के द्वारा आत्मनिर्भरता को भी सिखाना है
1: जी।
0: तो विश्वविद्यालयों का ये दायित्व है, तंत्र ज्ञान मात्र नहीं, साइंस मात्र नहीं, अपितु आध्यात्मिकता और भारतीय विद्या के आधार पर, भारतीय ज्ञान परंपरा के आधारित ज्ञान व्यवस्था, तद्वारा अर्थव्यवस्था
1: जी।
0: तो नॉलेज इकोनॉमी जब बोलते हैं, केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इकोनॉमी नहीं है वो
1: जी।
0: वो आध्यात्मिकता के साथ, धर्म के साथ और साथ ही हमारे नागरिक दायित्व के साथ, हम जब भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़कर जब आत्मनिर्भर व्यवस्था निर्माण करेंगे तभी विकसित भारत होगा
1: जी।
0: तो ये सारे दायित्व शिक्षा पर है। शिक्षा यानी शिक्षा संस्थान, शिक्षा संस्थान यानी शिक्षक
1: जी।
0: चाहे वो प्राथमिक शिक्षक हो, चाहे उच्च शिक्षा का शिक्षक हो, संशोधक हो, सबका दायित्व शिक्षक पर है, शिक्षा संस्थानों पर है। हमारा दायित्व निभाने के लिए आज के नई भारत के, विकसित भारत के लिए जो शिक्षा नीति बनाई गई है उसको सम्यक रूप से समीचीन व्यवस्था के साथ हम यदि उसका अनुष्ठान करेंगे तब विकसित भारत की ओर बढ़ेंगे। इसमें टेक्नोलॉजी भी होगा, भारतीय ज्ञान परंपरा भी होगी
1: जी। यानी सब कुछ साथ लेकर हमें बढ़ना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो वो किसी एक क्षेत्र या एक अंग का विकास नहीं है, वो सर्वांगीण विकास है देश का। और इसमें हमारी शिक्षा पद्धति बहुत बड़ी भूमिका निभाती है और साथ ही हमारे युवा भी, हमारे छात्र भी। और प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है कि विदेशों में जो भारतीय बसते हैं वो भी, और जिन विदेशियों के हृदय में भारत बसता है वो भी भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज पोस्टबॉक्स नंबर 111 में हमने बात की नालंदा विश्वविद्यालय की एक बहुत अच्छी पहल की और साथ ही आधुनिक शिक्षा पद्धति में हो रहे बदलावों की, आधुनिक चुनौतियों की, लेकिन उनके साथ ही समाधानों की भी हमने बात की। इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ थे जिनके माध्यम से हमने विषयों को और गहराई से समझा है। प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी, आप माननीय कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: हमारे साथ इस कार्यक्रम में श्री प्रेम शंकर शर्मा रहे, जाने माने संस्कृत विद्वान। आप साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता, पूर्व में पीसीएस अधिकारी, अपर जिला अधिकारी के रूप में आप इलाहाबाद से सेवानिवृत्त हुए और आज इस कार्यक्रम में आपने हमसे साझा की संस्कृत भाषा की विशेषताएं, साथ ही ये भी कि किस प्रकार से हम अपने युवाओं को इनसे जोड़कर रखेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
2: नीलम जी, शुक्रिया।
1: हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील जोशी, आप सहायक आचार्य संस्कृत विभाग हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: आपका भी हृदय से धन्यवाद।
1: आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए और ये कहते हुए कि हम हमेशा याद रखें संस्कृत केवल भाषा नहीं, चरित्र निर्माण का एक माध्यम है, अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को आगे ले जाने का एक सूत्र है, ये हम याद रखें। मैं नीलम मलकानिया, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ और संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ अब आप सभी से अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए नजर डालते हैं इस घंटे के प्रमुख समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की एक सप्ताह की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गई। ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। वहीं रोमानिया की धरती पर 3 दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति का राजकीय दौरा हो रहा है। इससे पहले 1994 में ऐसी यात्रा हुई थी। समाचार में आगे, संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक से विपक्षी सांसदों ने बहिर्गमन किया। कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि तृणमूल और शिवसेना उबाठा के बागी सांसदों पर स्पीकर के फैसले के विरोध में सर्वदलीय बैठक से बहिर्गमन का फैसला किया। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। अगला समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंगल पांडे की देशभक्ति और वीरता की गाथा देश की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। और अगला समाचार है, मुंबई महानगर पालिका ने मानसून पूर्व तैयारियों के तहत सार्वजनिक और निजी परिसरों में 3,841 स्थानों पर खतरनाक पेड़ों और उनकी शाखाओं की छंटाई और हटाने का काम पूरा कर लिया है। शेष 542 स्थानों पर ये कार्य जारी है। और अंत में खेल समाचार, 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने 3 बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को लगातार सेटों में 21-17 से हराया। सिंधु ने 2 वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 प्रतियोगिता का खिताब जीता है। समाचार समाप्त हुए।

0: वाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: कहते हैं कि आराम आपको सुकून दे सकता है लेकिन तरक्की नहीं। तरक्की हमेशा उस एक कदम के बाद शुरू होती है जो कंफर्ट जोन से बाहर रखा जाता है। तो फिलहाल तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी को नमस्ते। और आज आपके साथ मैं आपकी दोस्त आरजे संतोष, कार्यक्रम म्यूजिक कैफे की शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत में आपसे बस हम कुछ पूछना चाहते हैं, जवाब जरूर दीजिएगा इस गाने के माध्यम से। हम

बहुत ही प्यारा सवाल है ना, जब कोई किसी से ये सवाल इस अंदाज में करता है तो कितना अच्छा लगता है ना। वैसे म्यूजिक कैफे में आप हैं संतोष के साथ, और जहां तक श्रोता और आरजे की बात होती है तो हर श्रोता की अपनी एक कहानी होती है। कभी कोई गीत उसे मुस्कुराने के लिए मजबूर कर देता है तो कभी कोई बात उसे फिर से जीने का हौसला भी देती है। और अच्छा रेडियो सिर्फ कार्यक्रम नहीं सुनाता है, वो अनजान लोगों के बीच अपनापन भी बुनता है। एक अच्छा आरजे सिर्फ बोलता नहीं है, वो हर शब्द के साथ ये एहसास देता है कि मैं आपकी बात समझती हूँ और मैं भी आपकी बात समझती हूँ। और बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस गाने के साथ साथ अपने जज्बात लिख भेजे, नमस्ते किया, गुड आफ्टरनून किया। आप सभी को भी नमस्ते, गुड आफ्टरनून, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा जवाब आपके लिए ये है।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
1: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।

तो जो बातें दिल से निकलती हैं वो दिल तक पहुंचती हैं, और जो म्यूजिक आपके दिल के करीब होता है उस म्यूजिक को आप बार बार सुनते हैं और अपनापन से भर जाते हैं। उस गीत के साथ एक अलग ही जुड़ाव हो जाता है ना, लगता है कि ये गीत ही हमें इतना ज़्यादा पसंद है। तो क्यों पसंद होता है? क्योंकि उसके सुरों के साथ उसके शब्दों का भाव भी आपके दिल को छूता चला जाता है। और कहते हैं, जैसे हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि इंसान को अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने से ही कुछ हासिल होता है, क्योंकि अगर आप अपने कम्फर्ट जोन में रहेंगे, बिस्तर में पड़े रहेंगे या अपने घर में बैठे रहेंगे या सिर्फ ख्वाबों ख्यालों में आप मंजिलें बुनते रहेंगे, मंजिलों की चाहत बुनते रहेंगे, तो कभी भी आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप एक बार घर से निकल पड़ते हैं तो बहुत सारी मंजिलें मिलती हैं। तो ये बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत ही हमने इसी बात से की थी, और वो इसलिए कि हम जानना चाहते हैं कि कंफर्ट जोन में रहने के कारण, कंफर्ट जोन में रहने के कारण यानी कि सही समय पर कदम न बढ़ाने के कारण, कहीं आपका कोई सपना अधूरा तो नहीं रह गया जिसे आपने पूरा करने में बहुत देरी कर दी? पूरा हुआ लेकिन समय लग गया। तो ऐसी बात जो है, आपके साथ अगर कोई कहानी जुड़ी हुई है, कोई बात, कोई घटना जुड़ी हुई है, तो आप हमें जो है अपनी पसंद के गीत के साथ लिखकर भेजिएगा। हम एक से दो के बीच में आपकी बात और उस गाने को ज़रूर शामिल करेंगे। तो चलिए, अब हमारे जज्बात आपके लिए क्या कहते हैं इस गाने के माध्यम से।

0: के अलग है अंदाज।
1: कोई मजाकिया
2: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
3: कोई लुभाए शेरो शायरी से
2: तो सुकून से भरी किसी की आवाज,
4: जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है।
1: अलग अलग अदाएं हैं सबकी खास, यही तो है FM रेनबो का राज।
5: 107.1 म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।
6: दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के।
5: FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी मुंबई का केंद्र है और FM रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी कि DRM पर भी सुन सकते हैं और साथ ही न्यूज़ ऑन एयर ऐप इस ऐप के माध्यम से आप 24/7 कभी भी कहीं भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जब चाहें जहां चाहें हम आपको गाने सुनवाते रहेंगे। और कार्यक्रम का नाम है म्यूजिक कैफे, तो कहते हैं शब्द जब साथ छोड़ देते हैं वहां से संगीत बोलना शुरू करता है। एक धुन कभी चेहरे पर मुस्कान ले आती है, कभी आंखें नम कर देती है, तो कभी थके हुए मन को फिर से जीने की वजह दे देती है। आज बात सिर्फ गीतों की नहीं बल्कि संगीत की उस अद्भुत शक्ति की जो दिल को भी छूती है और दिमाग पर भी अपना असर छोड़ती है। गीत तो बदलते रहते हैं, सुर बदलते रहते हैं, लेकिन संगीत हर दौर में इंसान के दिल की धड़कनों का सच्चा साथी बना रहता है। तो हर गीत सिर्फ सुर और शब्दों का मेल नहीं होता, हर गीत किसी कहानी, किसी याद और किसी एहसास का नाम होता है।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं और न्यूज ऑन एयर ऐप। इस ऐप के माध्यम से आप 24/7 कभी भी कहीं भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे गाने सुन सकते हैं, हमारे प्रोग्राम, न्यूज, समाचार, बातें, जज्बात, शायरी, सब कुछ हमारे साथ इंजॉय कर सकते हैं और अपनी बातें भी हम तक पहुंचा सकते हैं।

हैं और आपकी पसंद के कार्यक्रम भी होते रहते हैं बीच बीच में, तो अपनी पसंद के गाने भी उस कार्यक्रम में व्हाट्सएप पर भेजकर सुन सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657-661-071 और इस नंबर पर अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपके गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। और मुंबई से बाहर के श्रोता 022 लगाकर 4515-4132 पर फोन कर सकते हैं, 33 पर फोन कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है, इस नंबर पर हमसे बात कर सकता है या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकता है। आपकी फरमाइश हिट एंड फॉट कार्यक्रम में 1:05 से 2 तक शामिल की जाएगी, तो कार्यक्रम में आप अपनी पसंद हमारे साथ जो है हमें बता सकते हैं, हमारे साथ गाने सुन सकते हैं। हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपकी पसंद के गाने आपको सुनवाए जाएं। और जहां तक गीत संगीत की बात होती है, यह म्यूजिक कैफे कार्यक्रम है, तो आज जब आप कोई गीत सुने तो उसे सिर्फ सुनिए मत, महसूस भी कीजिए। हो सकता है वही धुन आपको सुकून दे, कोई पुरानी मुस्कान लौटा दे या फिर एक नई उम्मीद जगा दे। वैसे जिंदगी भी एक धुन है, इसे प्यार से गुनगुनाइए, हर दिन को एक नया सुर देकर मुस्कुराते जाइए। जैसे किसी गीत में हर सुर का अपना महत्व होता है, वैसे ही जिंदगी में हर पल का, कुछ पल ऊंचे सुर जैसे होते हैं तो कुछ धीमे सुर जैसे होते हैं, लेकिन इन्हीं से जीवन की धुन पूरी होती है। तो इन गीतों के साथ अपने जीवन की उस धुन का, जो धुन भी आपके जुड़ी हो इन गीतों के साथ, उसका पूरा आनंद लीजिए।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

अच्छा, हर गाने के साथ ना कुछ जज्बात ज़रूर जुड़े होते हैं। किसी ने वो गाने अगर अपने जो है किसी सैड समय में सुने हैं तो उन्हें वो सैड सॉन्ग्स अच्छे लगने लगते हैं। किसी को अपने बचपन के कुछ गाने बहुत आकर्षित करते हैं जो उन्होंने बचपन में सुने होंगे। किसी को अपनी जो है परिवार के किसी की याद आती है तो कुछ ऐसे सैड गाने सुनकर वो रो लेते हैं। कुछ लोग रोमांटिक गानों में उन्हें आनंद आता है, कुछ लोग कॉमेडी गाने भी पसंद करते हैं, और वैसे हम सब लोग सारे गाने ही पसंद करते हैं, बस समय समय की बात होती है। तो क्या होता है ना कि एक पुराना गीत और अचानक बचपन, कॉलेज, पहली नौकरी या किसी अपने की याद सामने आ जाती है। संगीत समय को नहीं रोकता लेकिन यादों को जरूर जगा देता है। धुनों ने जो मरहम रखा वो लफ्ज़ कहाँ रख पाए, कई बार सुरों ने ही दिल के जख्म सहलाए। और वैज्ञानिक शोध में बताते हैं कि संगीत सुनने पर हमारे मस्तिष्क में ऐसे रसायन का स्राव बढ़ सकता है जो खुशी और सुकून के भावना से जुड़े होते हैं, और यही कारण है कि प्रशिक्षित विशेषज्ञ कुछ परिस्थितियों में म्यूजिक थेरेपी का उपयोग उपचार के पूरक के रूप में करते हैं। कभी ध्यान दिया है आपने कि जब मन बेचैन होता है तो हम अनायास ही अपना पसंदीदा गीत खोजने लगते हैं, या कोई उसी टाइप का गीत कहीं बज रहा होता है तो जो है अगर हम दुख में हैं तो हमारे आंखों से गरम गरम अश्रुओं की धारा बह निकलती है, या हम खुश हैं तो हमारे चेहरे पर मुस्कान अनायास आ जाती है। मधुर संगीत तनाव को कम करने, मन को शांत करने और मूड बेहतर बनाने में सहायक होता है। इसीलिए संगीत सिर्फ कानों से नहीं दिल से सुना जाता है। संगीत दुनिया की शायद एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। एक मधुर धुन अनजान लोगों को भी एक एहसास में बांध देती है, यही संगीत का जादू है। कहते हैं सुरों में ऐसी बात है जो दिल तक उतर सकती है, खामोशियों की दुनिया भी धुनों से समर सकती है। और इसी के साथ अब जो है हमारा म्यूजिक कैफे कार्यक्रम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर चल रहा है। कुछ गाने आपकी नज़र करते हैं, फिर ठीक 1 बजे होंगे समाचार, और 1:05 से हिट एंड हॉट में आपकी पसंद के गाने होंगे। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि गाने सिर्फ एक लिखकर मत भेजिए, 4-5 गाने सेलेक्ट करके अपने पसंदीदा लिस्ट बना करके भेज दीजिए, उसमें से हम गाने सेलेक्ट कर लेंगे। और साथ ही आप अपनी कोई भी बात हमारे साथ साझा कीजिए, कोई कहानी, कोई जो कोई म्यूजिक, कोई शायरी, आपका नाम ले तो आपके नाम के साथ कुछ आपके जज्बात भी जुड़े तो फिर बात करने का मजा ही कुछ अलग होता है ना।

0: स्वानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं, और साथ ही न्यूज ऑन एयर ऐप पर आप हमें कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं 24/7 कभी भी। और हिट एंड हॉट कार्यक्रम

बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, इतना प्यारा गाना सूरज फिल्म का और रफ़ी साहब की आवाज़। इस गाने की फरमाइश की थी फिरोज सिगनपुरिया जी ने हमें व्हाट्सएप मैसेज करके। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657-661-071। तो हमारे जो श्रोता ये व्हाट्सएप नंबर नहीं जानते हैं वो नोट कर लें, और कहीं भी अगर आप फरमाइश कर रहे हैं तो वो शायद

कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो आपकी पसंद शामिल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। और फोन भी कर सकते हैं 4515-4132 पर या फिर 4515-4133 पर। इस नंबर पर आप हमें कॉल करेंगे तो हमारी जो है आपकी बात हमसे हो जाएगी। और साथ ही अगर मुंबई के बाहर के श्रोता हैं तो 022 मुंबई का एसटीडी कोड लगाना ना भूलें, तो आपकी कॉल फटाफट लग जाएगी और आप अपने गाने हमें बता सकेंगे। फिलहाल चलिए अगला गाना सुनते हैं। राम कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब ने इस गाने की फरमाइश की है। तीसरी मंजिल फिल्म का गाना है और एक बार फिर से मोहम्मद रफी साहब की आवाज़।

बहुत सारे गानों की लिस्ट इतनी लंबी हो गई है, इतने सारे मैसेज आ गए हैं कि शायद सबका नाम भी शामिल कर लूं तो बहुत बड़ी बात है। सबके गाने शामिल होने का तो थोड़ा सा संजोग कम दिख रहा है, क्योंकि इतने गाने इतने कम समय में शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो गाने शुरू शुरू में आ गए थे, जिनकी लिस्ट बन चुकी थी, वो गाने तो शामिल हो जाएंगे। लेकिन अब जो लिस्ट आ रही है, जो फरमाइश अब आ रही है, शायद वो फरमाइश पूरी ना हो पाए। तो अगला गाना हम ले रहे हैं, एक बार मुस्कुरा दो फिल्म से है ये गाना। और इस गाने की फरमाइश जो है की है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान साइमा, हसन नवाज, बाबू अहमद और बेबी चाह।

आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल हिट एंड हॉट कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और ये कार्यक्रम होता है लिसनर्स चॉइस, यानी कि आप सबकी पसंद के गाने हम सुनवाते हैं और बहुत सारे गाने इतने बड़े होते हैं कि जो है हमें बहुत सोचना पड़ जाता है। अगला गाना है आशा जी की आवाज़ में, आशा भोसले की आवाज़ में, मेरा साया फिल्म का गाना है और इस गाने की फरमाइश की है दीपा पालकर ने। और इसी के बाद एक और गाना आ जाएगा बॉबी फिल्म से, इस गाने के लिए फरमाइश की है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने। तो बैक टू बैक दो गाने।

बरेली के बाजार में झुमका गिर गया, लेकिन आपके पसंद के गाने यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो अगला गाना जो हमने आपको बताया था कि हम सुनवाएंगे, गूंज उठी शहनाई फिल्म का गाना भी सुनवाएंगे, लेकिन हमने कहा था कि हम सुनवाएंगे बॉबी फिल्म का गाना। और इस बॉबी फिल्म के गाने के लिए दो लोगों की फरमाइश आ गई है, दो अलग गीतों की फरमाइश आ गई है, लेकिन पहले जो फरमाइश आई थी वो गाना लग गया है, जो कि फरमाइश सतीश अनेजा और विमला अनेजा जी की चंडीगढ़ सिटी से है। तो दूसरा जो गाना है मैं शायर वाला गाना, ये पंकज मोहोड़ जी ने पसंद किया है। तो जो है पंकज मोहोड़ जी, अमरावती से आपने हमें व्हाट्सएप मैसेज किया है, लेकिन अब बॉबी फिल्म का दो गाना तो नहीं सुनवा सकते हैं, तो आप दोनों इस गाने को सुनिए और एंजॉय कीजिए।

0: बहुत ही प्यारा गीत अभी आप लोगों ने सुना। और अब समय ऐसा है कि 1:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय मराठी समाचार। तो ऐसे में अगर हम कोई गाना शुरू कर देते हैं तो उस श्रोता के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम आप लोगों के सारे गाने तो शामिल नहीं हो पाएंगे, आप समझते हैं। तो हम अरुणा जी खार से, इन्होंने मैसेज किया है, इनका गाना भी बहुत मुश्किल है लेकिन अगली बार ज़रूर सुनवाएंगे। अनिल ब्रांडे का भी मैसेज हमें आया है, दीपा पाल जी का गाना हो गया है। और अगला नाम है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र शेख मूसा, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप। अरे ऐसे नाम पढ़ रहे हैं तो हमें कहीं की याद आ रही है, चलिए किसी और चैनल की याद आ रही है, आप लोगों की चिट्ठियों की याद आ रही है जो आप लोग विविध भारती पर भेजा करते थे। ममता जायसवाल ने भी हमें मैसेज किया है, प्रमोद चिंचोलकर ने आकोला उमरी से मैसेज किया है, नवापारा से काशीनाथ पाटिल ने हमें फोन करके गाने की फरमाइश की थी और हमने कहा था सुनवाएंगे लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। और अगला नाम हमें दिखाई दे रहा है, ये नाम आपने अपना नाम लिखा है कि नहीं, ममता जायसवाल जी। जी हाँ ममता जी, आपका गाना भी क्यूट है लेकिन अब समय है समाचार का।
1: आकाशवाणी मुंबई, राजश्री आगाशे राष्ट्रीय बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। संसद अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीतून विरोधकांचा सभात्याग, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 3 देशांच्या दौऱ्यावर रवाना, सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांची प्रकृती स्थिर मात्र त्यांना इतर रुग्णालयात हलवण्याची त्यांच्या पत्नीची मागणी, जपान खुल्या बॅडमिंटन स्पर्धेत भारताची PV सिंधू अजिंक्य, आणि देशाच्या उत्तर भागात पावसामुळे जनजीवन प्रभावित। संसदेचं पावसाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरू होतंय, त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आज सर्वपक्षीय बैठक बोलावली। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते। या बैठकीत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचं कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी सरकारने सर्व राजकीय पक्षांना सहकार्य करण्याची विनंती केली। शिवसेना आणि तृणमूल काँग्रेसच्या फुटीर खासदारांना बैठकीला आमंत्रित केल्याच्या निषेधार्थ विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभात्याग केला, मात्र हे खासदार निषेध नोंदवल्यावर बैठकीत सहभागी झाले। संजय जाधव, संजय दिना पाटील, संजय देशमुख, नागेश पाटील अष्टीकर, ओमराजे निंबाळकर आणि भाऊसाहेब वाकचौरे या 6 खासदारांच्या शिवसेना पक्षप्रवेशाला लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी मंजुरी दिली। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून निवडून आलेल्या या खासदारांनी गेल्या महिन्यात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालच्या शिवसेनेत प्रवेश केला होता। या संदर्भात शिवसेनेचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी माहिती दिली।
2: शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली जे आहे 7 खासदारांचे आता 13 खासदार झालेले आहेत शिवसेनेचे। हे 13 खासदार जे आहे हे सभागृहामध्ये त्यांची भूमिका जी आहे ती मांडतील, महाराष्ट्राचे प्रश्न जे आहे ते त्या ठिकाणी उपस्थित करतील आणि त्याला न्याय देण्याचं काम करतील। बघा आमचे सगळे खासदार जे आहेत सभागृहामध्ये बोलतात।

पुणे से राकेश माथुर जी की पसंद पर गूंज उठी शहनाई फिल्म का ये गाना चल रहा था, लेकिन एक बार और किसी और कार्यक्रम में हम आपको जरूर ये गाना फिर से सुनवाएंगे। और जो है अब हम बढ़ेंगे अगले गीत की तरफ, और ये गाना है दोस्ती फिल्म का, मोहम्मद रफी की आवाज़ है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन है। हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनके गाने शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम में नाम हर श्रोता का शामिल होगा। और आप इतनी देर से सुन रहे हैं, आपने अपनी फरमाइश भेजी है, आपका जो है उस गीत के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन, आपकी पसंद होगी तभी आप अपनी पसंद के गाने लिखकर यहाँ पहुँचाते हैं। तो आपके जज्बात को ध्यान में रखते हुए हमें कभी कभी बड़ा दर्द हो जाता है कि आपका गाना नहीं सुनवा पाए। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं शेख मूसा जी, और सनावत से हैं ये शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोड़ाना जी, आपका बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। विजेंद्र घाटोल अकोला से हैं और कोशिश कर रहे हैं सभी का गाना सुनवाने के लिए। प्रदीप अनंत कृष्णन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत गवानकर जी हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, इनके साथ हैं सरिता गवानकर, सिद्धांत एकांश और छोटा लाडला टुक टुक गवानकर भी हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। और अगला नाम है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रदीप अनंत कृष्णन जी को गाने अच्छे लगे, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। कैथल हरियाणा से जसवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा हैं। और अगला नाम हमारे साथ है प्रणव शिंदे का, हालांकि बहुत पहले इनकी फरमाइश आ गई थी लेकिन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन हम जानते हैं कि आप नाराज नहीं होंगे, अगले कार्यक्रम में हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। पंकज मोहोर जी, कविता जी हैं, कविता और दिग्दर्शन और कविता गौड़ मेरठ कैंट से हैं, आपका गाना कार्यक्रम में शामिल होगा, क्योंकि लिस्ट में शामिल हो गया है, रजिस्टर में लिखा जा चुका है तो जरूर शामिल होगा। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमलकांत गुप्ता और श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, पिपरिया से हमारे साथ हैं। और अगला नाम हमारे कार्यक्रम में है सुनील पाठक जी का, इनके साथ हैं कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गावया मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक, अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से हैं आप हमारे साथ। अगला नाम है कृष्ण की नगरी मथुरा से, सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना बुशरा, गुलिस्ता नंदिनी और अंजलि का नाम भी शामिल हो रहा है। तो इसी के साथ एक और नाम हमारे साथ जुड़ रहा है, ये नाम है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा और उनके साथियों का, ये नाम शामिल कर चुके हैं। और एक नाम है पांढर कवड़ा से, अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री और धनश्री बुरांडे का, बल्हार शाह से सूरज लोंढे, प्राची लोंढे और एकलव्य लोंढे का मैसेज है। और अरुणा ने खार से हमें मैसेज किया है, अरुणा जी आपका नाम शामिल हो रहा है। और अगला मैसेज है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी जी का हमारे साथ नाम जुड़ रहा है। और गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सतीश अनेजा, विमला अनेजा चंडीगढ़ सिटी से हैं। और अगला नाम हमारे साथ है सत्येंद्र जी का नाम जुड़ रहा है, आप ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हैं, सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया हैं आपके साथ। संदीप कुमार जी हमारे साथ हैं, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक गोरा

आया जालंधर से है सत्ते पे सत्ता फिल्म का गाना, अगले कार्यक्रम में हम जरूर सुनवाएंगे। बालिका वधु फिल्म का गाना भी पसंद किया हमारे साथियों ने, विनायक वगाड़े वाई सातारा से, और शुभ लक्ष्मी मस्तकर जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अभिमान फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गाना आपने फरमाइश किया है, और अगला नाम है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह का उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से हैं आप, और फिरोज सिगनपुरिया जी, और लालगिरी गोस्वामी जी भी हमारे साथ हैं, हेमलता हीना हर्षित खुशी गोस्वामी के साथ, और हितेंद्र दास हमारे साथ हैं, और हमारे साथ हैं त्रिभुवन नारायण जी हैं, और वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय साखरे जी इंदौर से हैं, बहुत ही प्यारा गाना आपने फरमाइश किया है, और नूतन बर्वे जी हमारे साथ हैं, लव स्टोरी फिल्म का गाना आपका उधार रहा, अगली बार जरूर सुनवाएंगे। डॉक्टर अंजू हमारे साथ अंधेरी ईस्ट से मुंबई से जुड़ी हुई हैं, और डॉक्टर अंजू जी आपको नमस्ते है, और बाबा जी हैं हमारे साथ दादर मुंबई से जुड़े हुए हैं, रजनीकांत पाटिल वाढ़वन से रघुनाथ पाटिल के साथ आप हैं, और जो है मैं संतोष हूँ, मेरा नाम है संतोष शुक्ला, आपने किसी और का नाम लिख दिया है तो कोई बात नहीं। उदय मिस्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उदय और प्रवीणा मिस्त्री हैं, और नवसारी गुजरात से हैं, नवसारी में मेरी एक दोस्त और रहती है, ज्योति घाटोल अकोला से हमारे साथ हैं, और जूली सिल्वेरा ने हमें मैसेज किया है, और इन्होंने कहा है कि आज जो है किसी का प्रकाश शिंदे जी की डॉटर का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, और हमारे जिन भी श्रोताओं का बर्थडे है आज फैमिली में या पहचान में, जिस किसी का भी जहां भी संसार में बर्थडे है, सभी को हैप्पी बर्थडे कहते हैं, सभी के लिए शुभकामनाएं हैं कि जीवन में आगे बढ़ें, और जो है उनके साथ सब अच्छा हो और उनकी सारी मुरादें पूरी हो। प्रकाश शिंदे, प्रणव शिंदे, प्रमोद चिंचोलकर, पंकज माहौड़, अनंत प्रदीप, अनंत कृष्णन जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ और सुनते हैं ये गाना, आप सबके लिए है।

कुछ श्रोता इतना भावुक कर देते हैं कि कहते हैं कि मेरी पसंद के गाने की दो ही लाइन सुनवा दो। तो ऐसे में क्या किया जाए? अगर हम हर गाना दो दो तीन तीन लाइन सुनवाएंगे तो कैसे काम बनेगा? ऐसा नहीं कर सकते हैं। और कुछ हमारे श्रोता हैं जो बोलते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई कि हमारा गाना नहीं सुनवाया गया। ओमकार काटकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पंढरपुर से आपने मैसेज किया है, और जिन लोगों के गाने इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए हैं उनके गाने हम ज़रूर सुनवाएंगे, शामिल करेंगे अगले कार्यक्रम में। और कोशिश तो यही रहती है कि सभी के गाने सुनवाए जाएं, लेकिन समय के साथ तो चलना पड़ता है ना। हम समय को तो बिल्कुल बढ़ा नहीं सकते हैं कि हम एक दो गाना और सुनवा दें, लेकिन आप लोगों की भावनात्मक बातों पर मैं कुछ लाइन ज़रूर कहना चाहूँगी कि उम्र बीत गई पर एक बात समझ ना आई, जिनसे मोहब्बत वो कदर क्यों नहीं करते। समझे? जिनसे मोहब्बत हो वो कदर क्यों नहीं करते। और एक और बात, मत देख हम गुनहगार कितने हैं, ये देख कि हम वफादार कितने हैं। फिलहाल इसी बात के साथ आप लोग मेरे जज्बात समझ गए होंगे और आप लोगों से विदा लूंगी। और आप सभी से यही कहूंगी कि अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। और अपनी दोस्त आरजे संतोष को दुआओं में याद रखिए।

0: Attack comes in response of U.S. launch airstrikes earlier this morning targeting Iran's paramilitary Revolutionary Guard to retaliate for the killing of American troops in Jordan yesterday. On to sports now. In badminton, star and shuttler and two-time Olympic medalist P.V. Sindhu scripted history, becoming the first Indian to win the prestigious Japan Open. She clinched the women's singles title in Tokyo today, defeating local favorite and three-time world champion Akane Yamaguchi in straight games 21-17, 21-17. With the win, Sindhu ended a title drought of more than 2 years. Sindhu's previous title came at the Syed Modi International in 2024. The Indian shuttler entered the final after opponent and world number 4, Chen Yufei of China, retired with the second set of the match yesterday. Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia congratulated P.V. Sindhu on the historic triumph. In a social media post, Dr. Mandavia said the entire nation is proud of her. Football fever has gripped fans across the globe as defending champions Argentina and European powerhouse Spain prepare for a thrilling showdown in the FIFA World Cup final at the New York, New Jersey Stadium tonight. The title clash is scheduled to kick off at 12:30 a.m. Indian Standard Time. The two football giants will battle it out for the coveted trophy in a high-voltage clash that promises excitement, drama and unforgettable moments. Both teams have produced impressive performances throughout the tournament and will now battle for football's biggest prize. Last night, England secured bronze medal after defeating France 6-4 in a thrilling third-place match at Miami Stadium. In cricket, the series deciding third ODI between India and England will be played today at Lord's in London. The match is scheduled to begin at 3:30 p.m. Indian Standard Time. The series is level 1-1. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government holds all-party meeting ahead of the monsoon session of Parliament. Opposition stages symbolic walkout of invitation to NCPI to the meeting. Parliamentary Affairs Mr. Kiran Rijiju seeks cooperation of all parties for smooth running of Parliament. Flash floods and landslides hit multiple places in Jammu and Kashmir, claiming several lives and damage to property. Rescue operations in full swing, sent assures of all possible assistance. President Draupadi Murmu embarks on three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania. In badminton, PV Sindhu scripts history, becoming first Indian to win Japan Open, clinches women's singles title, defeating Japanese shuttler Akane Yamaguchi. And football fever peaks worldwide as Argentina and Spain gear up for a showdown in FIFA World Cup final tonight. And with that, we end the Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
2: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मॉनसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनैतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01991-295-681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
4: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
1: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविने ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है, इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
5: 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने 3 बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने 2 वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 3रा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर ऑलराउंडर हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर 3रा स्थान हासिल किया।
1: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के

कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली ओएमआर शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया रवाना हो गई। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल, जिसे आप सुनते हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। शाम के ठीक 5:03 हो रहे हैं और ये वक्त होता है जिंदगी के बारे में बात करने का, जिंदगी को फिर एक दिन कहने का, लव यू। जी हाँ, लव यू जिंदगी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ आपकी रेनबो सखी आकांक्षा, लेकर बेहद प्यारी प्यारी नगमे और जिंदगी और इस मौसम से जुड़ी बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें भी। शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

अभी फिलहाल यानी इस वक्त तो कुछ सुनने के लिए या कहने के लिए बचा ही नहीं है, क्योंकि अभी तो ये वक्त है कि बस बारिश की बूंदों से बचकर घर पहुंचना है। आप में से बहुत से हमारे फ्रेंड्स होंगे जो घर के लिए अब निकल चुके होंगे, क्योंकि बारिश जो है वो जो है अपने शबाब पर है। और इन दिनों सही मानों में ऐसा लगता है कि बरसात का मौसम एंजॉय करने से पहले हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अचानक जो है मौसम बदल जाता है। पहले तो बारिश की राह हम देख रहे थे, फिर जब बारिश आई तो ऐसा लगा कि हे भगवान इतनी सारी बारिश। फिर बारिश जो है उसे थोड़ा सा गुस्सा आ गया, वो नाराज़ हो गई हमसे। और अब जब हमने कहा कि नहीं भाई सॉरी सॉरी, तो फिर से जो है बारिश अपना काम कर रही है, और हमें उस बारिश का ख्याल रखते हुए अपना काम करना होता है। तो ये जो शाम का वक्त है, घर जाने की बहुत जल्दी होती है हमें, और बारिश का जो है मूड ध्यान में रखते हुए हमें अपना सफ़र तय करना होता है। तो ज़रा बारिश का मूड ध्यान में रखते हुए अपना सफ़र सेफली तय कीजिए, यही हम आपसे गुजारिश करते हैं, क्योंकि बारिश का जो मूड है ना वो बिल्कुल इस गीत की तरह है, ताथैया ताथैया वाला।

लव यू जिंदगी प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और इसे आप सुनते हैं एफएम रेनबो चैनल पर। दोस्तों, बहुत बारिश हो रही है बाहर और बारिश के मौसम में जनरली ऐसा कहा जाता है कि पानी उबाल कर पिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वायरल फीवर होता है तो बीमारियों से बचें। ये सब हम नहीं कहते हैं, ये सब डॉक्टर साहब कहते हैं। बस हम तो ये कहते हैं कि अपना ख्याल रखिए थोड़ा सा, लेकिन बारिश का ज़रूर मज़ा उठाइए।

रेनबो चैनल के साथ ये थोड़ी सी गपशप और गीत हो तो भाई बस और क्या चाहिए। हम भी ऐसा ही सोचते हैं भाई, इसलिए ये तो है कि बारिश का मौसम चलता रहेगा, बारिश होती रहेगी और बारिश के मौसम में थोड़ी सी जो है सेहत भी हमारी डावाडोल रहती है, क्योंकि अचानक क्लाइमेट बदल जाता है, मौसम का मिजाज बदल जाता है और हम उस तरह से, हमारा शरीर उस तरह से अगर नहीं एडजस्ट कर पाया तो छोटी मोटी बीमारियां होती रहती हैं। लेकिन ये सब तो बदलते मौसम के साथ होता रहता है, लेकिन इसलिए आप मौसम इंजॉय ना करें ऐसा थोड़ी ना होता है। और ये मौसम जो हैं वो ज़िंदगी में आते रहेंगे, साथ ही साथ ऐसे भी कुछ मौसम हैं जो ज़िंदगी में हर साल नहीं आते हैं बल्कि कभी कभी आते हैं, ऐसे भी मौसम होते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा, आप सोचिए ज़रा ये कौन सा मौसम है जो ये बता रहे हैं साहब।

हाँ ये भी सही बात है कि आप जैसा भी कोई नहीं है श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं कि बारिश में नहीं भीगना चाहिए ज़्यादा, यानी कभी मजबूरी हो छाता भूल गए तो अलग बात है, लेकिन बारिश में नहीं भीगना चाहिए, थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। मौसम बदल रहा है और यहाँ मुझे आपके मैसेज आ रहे हैं कि बस हम एंजॉय कर रहे हैं बारिश का मौसम और आज सवेरे ही भीगे थे या कल शाम को ही भीगे थे या अभी भीग रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मैसेज रिसीव कर रही हूँ मैं यहाँ पर, बहुत अजीब लग रहा है, हंसी भी आ रही है, लेकिन क्या करें भाई, मौसम ही ऐसा है और ऑफिस के लिए निकलना या कॉलेज के लिए निकलना हमारी मजबूरी है घर से बाहर। एंजॉय कीजिए आप बारिश का मौसम, मैं ये नहीं कहती कि एंजॉय मत कीजिए, लेकिन थोड़ा संभल कर, क्योंकि सेहत का हमें ख्याल रखना है। और तो और कभी कभी ये भी हो जाता है ना कि हम जब थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं तो घर पे अपने ही डॉक्टर बन जाते हैं, यानी कि डॉक्टर साहब तो बहुत सारी हमें अच्छी अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि डॉक्टर अंकल के पास जाने से बचने के लिए हम घर में ही कुछ छोटी मोटी दवाइयाँ ले लेते हैं। लेकिन इससे सावधान रहिए, इससे बचिए, क्योंकि उनके प्रिस्क्रिप्शन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी होती है और अपने आप से कोई दवाइयाँ इस जो है माहौल में, इस क्लाइमेट में बिल्कुल मत लीजिए। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, आपको ज़रूर सुनिएगा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जिसे आप न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी सुनते हैं।

आज की लव यू जिंदगी प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए आकांक्षा को इजाजत, लेकिन सुनते रहिए एफएम रेनबो चैनल। ठीक 6:05 पर मराठी में समाचार होंगे और 6:15 पर अंदाजे बयां प्रोग्राम के साथ हम फिर हाजिर होंगे।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल, जिसे आप सुनते हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी। शाम के ठीक 6:16 हो रहे हैं और अंदाजे बयां प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा और अंदाजे बयां प्रोग्राम में कुछ ऐसे शेर होंगे हमारे साथ और चंद नायाब गजलें भी होंगी। शुरुआत करते हैं बेगम अख्तर की आवाज़ से।

दिलों की बात करो, महफिलों की बात करो, लेकिन कभी कभी दिल जो है वो भी गम से भरा हुआ होता है। न जाने कौन सी टीस होती है उसमें कि आंखों के आंसू दिल में भर जाते हैं और फिर भरी महफिल भी सूनी लगने लगती है, क्योंकि वो सूनापन दिल में होता है। और जब दिल सूना हो तो शाम भी सूनी सूनी लगती है। तभी तो शायर कहते हैं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है।

एक चेहरा, उससे जुड़े हुए तमाम ख्वाब, उससे जुड़ी हुई जिंदगी की सारी तमन्नाएं, एक इंसान जो दिल के लिए बहुत खास है, जो हमारी जिंदगी का उजाला बन जाता है। जिंदगी की किसी मोड़ पर अचानक से मिलने वाला एक शख्स जिंदगी भर के लिए हमारी जिंदगी को रोशन रंगीन बना देता है। तभी तो बशीर बद्र कहते हैं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।

आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल, जिसे आप न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी सुनते हैं। दोस्तों, अंदाज़े बयां प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकांक्षा के साथ। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि एफएम रेनबो चैनल पर आप मराठी, हिंदी, अंग्रेज़ी, सारी जो भाषाएं हैं इनके बहुत ही पॉपुलर गीत सुनते हैं, बेहतरीन गीत सुनते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो आरजेज हैं वो भी सारे आपके दोस्त हैं, इसलिए आप जब फरमाइश करते हैं तो भी हमें ढेर सारी फरमाइशें आती हैं जिन्हें हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि ठीक 7:15 से आप

सुनेंगे हम तुम प्रोग्राम, जिसमें आप फरमाइश करते हैं और हम आपकी फरमाइश पूरी करते हैं। तो ज़रूर हमें SMS भेजिए और आपकी फरमाइशें हम तुम प्रोग्राम में हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये एक बात ज़रूर बताना चाहती हूँ कि आपकी फरमाइशें अभी से हमारे पास आना शुरू हो गई हैं और हमने नोट डाउन करना भी शुरू हो किया है और लिस्ट बननी शुरू हो गई है गानों की। तो ज़रूर अपना अगर कुछ फेवरेट गीत आपको सुनना है तो हमें SMS ज़रूर कीजिए और हम आपको वो गीत सुनवा देंगे। आखिरी गीत आपको अंदाजे में आप प्रोग्राम का सुनवाती हूँ, ये है अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

एफएम रेनबो चैनल पर अंदाजे बयां प्रोग्राम गजलों के साथ आप सुन रहे थे। दोस्तों, 7 बजने वाले हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे मराठी में समाचार और 7:15 पर हम तुम प्रोग्राम आपकी फरमाइशों पर आधारित होगा। मिलते हैं 7:15 पर।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और जिसे आप सुनते हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी। शाम के ठीक 7:10 और 50 सेकंड हो रहे हैं। हम तुम प्रोग्राम के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी रेनबो सखी आकांक्षा और हमारे साथ हैं ढेर सारी फरमाइश। तो चलिए बिल्कुल बातों में वक्त नहीं गवाती हूँ और शुरुआत करते हैं इस फरमाइश के साथ।

दोस्तों हम तुम प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर और फरमाइशों से भरा ये प्रोग्राम है हम तुम। आपकी फरमाइशें भी पुरजोर आ रही हैं और जिन श्रोताओं की हमें फरमाइश मिली है कुछ नाम आपको बता दूं। राकेश माथुर जी का पुणे से, दीपाली शिरोडकर, पंकज मोहोड अमरावती, ममता जायसवाल, फिरोज सिगनपुरिया, संजय दर्शन, प्रणव शिंदे, डॉक्टर अंजू जी का अंधेरी से हमें मैसेज आया, केदार और सुमित यादव कुरला से, राजेंद्र परमार, अरविंद कुलकर्णी जी का इचलकरण जी से, मुस्तफ़ा, अजय साखरे जी का इंदौर से, रश्मि और शार्दुल भारती डोंबिवली से, प्रमोद चिंचोलकर जी का भी हमें मैसेज मिला और सारी फरमाइशें भी मिली। और भी गाने हैं लिस्ट में, और भी नाम हैं श्रोताओं के लिस्ट में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ रुकती हूँ और अगला गीत आपको सुनवाती हूँ, फरमाइशी गीत।

प्यारे प्यारे गीत आपकी फरमाइशों में लगता है मेरी भी फरमाइशें शामिल हैं, और ये सारे गीत जो आप फरमाइश करते हैं मेरे भी फेवरेट हैं। हम तुम प्रोग्राम में आप फरमाइश कर रहे हैं और मैं आपको आपकी फरमाइश सुना रही हूँ। जो श्रोताओं ने हमें मैसेज भेजे थे उनकी कुछ नाम तो मैंने पहले ही ले लिए हैं, कुछ नाम अभी आपको बता देती हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको लगे कि हमारे नाम क्यों नहीं ले रही हैं मैम। तो आपके लिए आगे की लिस्ट जो है वो मैं पढ़ती हूँ। सुशील और रेणु यादव जी का उदयपुर से मैसेज आया है, राजश्री और अशोक जोशी जी का विक्रोली मुंबई से, प्रदीप अनंत कृष्णन जी का चेंबूर से, इब्राहिम जी का मुंब्रा से, हीरामणि वर्मा जी का मैसेज भी हमें आया है। साथ ही साथ विकास चिरनेरकर जी ने प्रभा देवी से हमें मैसेज भेजा है, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद भरत वर्मा जी का छत्तीसगढ़ से, मुकेश, शीतल, सोनू, काजल, मोहिनी जी का मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से,

ओंकार काटकर जी का पंढरपुर से, विजेंद्र घाटोल जी का अकोला से, और अमोल दहीतुले और प्रिया जी का भी हमें मैसेज आया है, तो इनकी फरमाइश का सुनवाते हैं ये गीत।

पता है आपको, ख्वाबों में चांद पकड़ना आसान होता है, लेकिन जब हम फरमाइशी प्रोग्राम करते हैं ना आपके लिए, तो आप सब लोगों की फरमाइश पूरी करना मतलब चांद को हासिल करने जैसा इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि ये जो टाइम है ना 50 मिनट का, ये समय ऐसे गुजर जाता है मानो हाथ से रेत फिसल रही हो, और आप सबकी फरमाइश तो पूरी हो नहीं पाती। हम कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वक्त की पाबंदियों में बंध जाते हैं और वक्त हाथ से निकल जाता है। फिर भी हम कोशिश पूरी करते हैं, ये मैं दिल से कह रही हूँ। आपकी जो फरमाइशें हमें आई, उन सारे गीतों की लिस्ट हम बना लेते हैं, आपके नामों की लिस्ट बना लेते हैं, लेकिन उतने सारे गीत हम इन 50 मिनट में नहीं आपको सुनवा पाते, इसलिए हम आपको सॉरी ज़रूर कहेंगे। लेकिन जिन सब श्रोताओं ने हमें मैसेजेस भेजे, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आखिरी गीत आपको सुनवाने का समय हो गया है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये आखिरी गीत होगा हम तुम प्रोग्राम का। दीजिए आकांक्षा को इजाज़त, लेकिन सुनते रहिए एफएम रेनबो चैनल, क्योंकि मेरी फ्रेंड एंजेला यहाँ पर मौजूद हैं, जो 8 बजे से आपके साथ होंगी रॉक विथ चॉक प्रोग्राम के साथ। सुनते रहिए एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दीजिए आकांक्षा को इजाज़त, नमस्कार।

0: सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्व भर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्री कृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
2: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया क्योंकि NCPI मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया? इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
0: NCPI के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि NDA में NCPI अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
3: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया जो पार्टी का जहां पोजीशन हो दो एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन, दे हैड टू बी गिवन चांस एंड गवर्नमेंट शुड आल्सो फील टू रन द हाउस इज देयर रिस्पांसिबिलिटी, बट इन आवर हाउस इट हैज बिकम रेगुलर प्रैक्टिस टू डिस्टर्ब द हाउस एंड नॉट अलाउ द हाउस टू रन।
0: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मानसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगू की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
4: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
5: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक

0: एक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्दोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
1: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रापड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए असर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होम स्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है, जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता है। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने सामने होंगी।
3: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेसी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेसी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन के प्रबल दावेदार है। लोटारो मार्टिनेज ने 3 गोल

0: और एंजो फर्नांडीज ने दो गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयर्ज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर है। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित है। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई हैं। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Government holds all-party meeting on the eve of monsoon session of Parliament beginning tomorrow. Urges all political parties to ensure smooth functioning of the session. Centre to develop over 160-kilometre long Rameshwar Paradeep Highway along Odisha coast to boost tourism and spiritual journeys. 11 people killed as torrential rain triggers landslides in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir. Flash floods following heavy rain claim 9 lives in Nagaland. US military launches airstrikes targeting Iran's paramilitary Islamic Revolutionary Guard Corps in retaliation of killing of American troops in Jordan. And in sports, football frenzy grips world as Argentina and Spain prepare for the final battle of FIFA World Cup tonight. And in men's cricket, host England set 388 run target for India in the third and final ODI at Lord's. And now the news in detail. The monsoon session of Parliament will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government today convened an all-party meeting in Parliament House and Nexi. The meeting was chaired by Raksha Mantri Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of the Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
3: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed, that has to be decided in the Business Advisory Committee.
2: Talking to media, TMC MP Mahua Moitra said that this entire opposition, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM and Aam Aadmi Party, walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party.
4: Today the entire opposition, all parties have all walked out, all

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौन भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्णा देव रायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने उन सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। डॉ महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। यह जब्ती पिछले 3 हफ्तों में CISF की सुरक्षा में चल रहे कोयला क्षेत्रों में गहन अभियानों के दौरान की गई। इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और एक निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 40 ओवर में 2 विकेट पर 267 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कुछ महफिलें पूरी रात चलती हैं और कुछ सिर्फ एक इंतज़ार पर टिकती है, इंतज़ार जिसका वक्त कभी ख़त्म नहीं होता। वो कहते हैं ना कि रास्ते वही थे, बस कदम रुक गए और हम इंतज़ार करते करते थक गए। तो यही जो इंतज़ार है, यही जो किसी का वेट है, यू नो, वांटिंग टू समबडी टू कम टू टेल यू और ये आपसे बातें करें, वो जो चीज़ है उसी का वो इंतज़ार है। और उस इंतज़ार में भी कुछ मज़ा अलग सा है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा ही खूबसूरत नगमा आशा भोसले और भूपेंद्र की आवाज़ में, जो यही कुछ बातें कर रहे हैं।

हर महफिल की शुरुआत अक्सर मोहब्बत से होती है ना। मोहब्बत की बातें, मोहब्बत की जो कायतें होती हैं, आयतें होती हैं, और मोहब्बत की जो कसीदे होते हैं वो पढ़े जाते हैं। मोहब्बत जो कभी इजहार होती है तो कभी सिर्फ नज़रों की ज़ुबान। वो कहते हैं कि मोहब्बत में जब बातें कम पड़ जाती हैं तभी तो खामोशियाँ गज़ल बन जाती हैं।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

सबसे बड़ी महफिल वो होती है जो यादों में लगती है, जब किसी को याद करते हैं और फिर हर रंग उमड़ उमड़ के आता है, जहां लोग नहीं होते, सिर्फ उनकी बातें होती हैं और उनकी यादें होती हैं। और कहते हैं ना कि यादें कभी भी दरवाज़ा नहीं खटखटाती, बस वो एक खुशबू की तरह, एक हवा की तरह सीधे आके दिल में उतर जाती है, हम में समा जाती है। आप सुन रहे हैं रंगी महफिल, मैं हूँ आपके साथ आपका अपना म्यूजिकल हम सफ़र, आरजे निखिल वर्मा।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: महफिल सुन रहे हैं आप मेरे साथ, मैं हूं आपका अपना म्यूजिकल हमसफर आरजे निखिल वर्मा। और रंग महफिल में आज हम बात कर रहे हैं उस हर रंग की जो महफिल में होती है। ऐसा ही एक रंग होता है उस शख्स का, या उसका रंग या उस शख्स के बारे में बात कर सकते हैं जो बहुत कम बोलता है, लेकिन जब वो शेर पढ़ता है, जब वो शायरी करता है, तो पूरी महफिल उसके मुरीद हो जाती है। वो अल्फाजों को सजाते नहीं, अपने दिल की आवाज़ को बयां कर देते हैं। वो उस बात को बोल देते हैं और वो बात फिर बहुत दूर तक जाती है जब वो बात उनके लफ्जों से निकलती है।

और उसी महफिल में बात करते हैं हम दोस्तों के रंगों की। दोस्त भी उस महफिल में होते हैं, ना कोई आपको उनको कोई बुलाने का जरिया भी नहीं होता, आप उनको बस कह दीजिए, मतलब कोई बुलाने का कारण या कोई खास मतलब भी नहीं हो तो भी आप उनको कह दीजिए कि वो आ जाए, वो आ जाएंगे। और दोस्त कहते हैं ना, वो नहीं जो सिर्फ साथ चले, दोस्त वो होते हैं जो आपकी खामोशी को समझ ले। लेकिन फिर दोस्त ऐसे भी होते हैं कि आप उन दोस्तों को अपने दोस्त बनाइए जो आपकी दोस्ती का, आपके वायदों का बिल्कुल ध्यान रखे, आपके साथ जुड़े रहे, आपकी हर बात को माने। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो लोग दोस्त बनते हैं वही आपको फिर दगा भी देते हैं, ऐसा ही कुछ कह रहे हैं जगजीत सिंह भी।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

तक पहुंचने वाला है और ये शो भी अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है। और कहते हैं ना कि हर महफिल खत्म होने के बाद एक खामोशी जरूर रह जाती है, बट यहाँ कोई खामोशी नहीं रहेगी क्योंकि आकाशवाणी पर 24/7 हम आपके लिए म्यूजिक, एंटरटेनमेंट और बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर आते हैं। और ये महफिल ख़त्म भी हो जाए और तन्हाई में हम आपको बिल्कुल नहीं जाने देंगे, बट कहते हैं कि अगर आप तन्हाई में होते हैं तो अच्छी अच्छी शायरी, अच्छे अच्छे गीत आप अक्सर लिख पाते हैं। आपको एक और बहुत ही प्यारा सा ये नगमा है हरिहरन की आवाज़ पे, सुनिए उन्हें आकाशवाणी रेनबो।

और अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। महफिल का असली रंग न सुर होते हैं न साज, असली रंग होते हैं वो लोग जो सुनते हैं और सुनाते हैं और फिर मुस्कुरा देते हैं या फिर चुपके से आंखों को नम कर लेते हैं। आज हमने मोहब्बत भी महसूस की, इंतजार भी, यादें भी, तन्हाई भी।

उम्मीद भी। हर गजल की एक कहानी है और हर महफिल जिंदगी का एक खूबसूरत सफ़ा। मैं हूँ आरजे निखिल, ले रहा हूँ आपसे इजाज़त इस वादे के साथ कि मिलूँगा आपसे बहुत जल्द, और छोड़े जा रहा हूँ आपको एक बेहतरीन नगमे के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। नमस्कार।

ये तरंग महफिल निखिल लेकर आए थे, ये खूबसूरत महफिल आप तक पहुंचा रहे थे निखिल, शुक्रिया निखिल। समय हो चला है अब तक के मुख्य समाचार।

होगा आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इससे पहले कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के मानसून सत्र से पहले कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों से कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर मोल्डोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया के लिए रवाना हुई। केंद्र सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा तट के साथ 160 किलोमीटर से अधिक लंबा रामेश्वर पारादीप हाईवे बनाएगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी। भारतीय वायुसेना आज रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के डार्विन बेस पर एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 शुरू करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में भूस्खलन से 11 लोगों की मौत हो गई। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोगों की जानें चली गईं। सरकार देश भर में मशीनीकृत स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए स्वच्छता कर्मचारियों को उनकी सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र नमस्ते योजना को एक प्रमुख पहल के रूप में लागू कर रही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ रुपए मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों की मौत के जवाब में अमेरिका ने ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। और फीफा विश्व कप के फाइनल में आज रात 12:30 अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। 12:02 हो चुके हैं, आपका स्वागत है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम जीरो आर शो हमारे साथ।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आए हाय,
1: तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: बरसों बाद यूं खेलने निकली हूं, ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे, कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

रात्रि के 1 बज चुके हैं और समय है इस घंटे के मुख्य समाचारों का। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इससे पहले कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के मानसून सत्र से पहले कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों से कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करने की अपील की। केंद्र सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा तट के साथ 160 किलोमीटर से अधिक लंबा रामेश्वर पैरादीप हाईवे बनाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी। असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। 7 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 57,000 से अधिक हो गई और एक व्यक्ति के मरने की भी खबर है। भारतीय वायुसेना आज रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स

कोर्स के डार्विन बेस पर एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 शुरू करेगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल कोलकाता के विश्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से हावड़ा जिले के संकराइल में अमूल बंगाल डेयरी के दही बनाने के केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी। सरकार देश भर में मशीनीकृत स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र नमस्ते योजना को एक प्रमुख पहल के रूप में लागू कर रही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ रुपए मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों की मौत के जवाब में अमरीका ने ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है और फीफा विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच मैच जारी है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर में होगा कार्यक्रम सुहानी रात मेरे यानी रजत के साथ।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

नमस्कार, लीजिए पेश है एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होगा, 13 अगस्त तक चलेगा। इससे पहले कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। दिल्ली यातायात पुलिस ने संसद के मानसून सत्र के मद्देनजर आज से नई दिल्ली क्षेत्र में विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए ना तो कोई इजाजत मांगी गई है और ना ही दी गई है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी। भारतीय वायुसेना आज रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के डार्बिन बेस पर एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 शुरू करेगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कल कोलकाता के बिस्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से हावड़ा जिले के संक्राइल में अमूल बंगाल डेयरी के दही बनाने के केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी। सरकार देश भर में मशीनीकृत स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र नमस्ते योजना को एक प्रमुख पहल के रूप में लागू कर रही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ रुपए मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। 7 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 57,000 से अधिक हो गई और एक व्यक्ति के मरने की खबर है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए आज से बृहस्पतिवार तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले

कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराईदेव, तिनसुकिया, लखीमपुर, शिवसागर, उदलगुरी और जोरहाट जिले प्रभावित हैं, जिनमें से अधिकांश ऊपरी असम में स्थित हैं। लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली और फीफा विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच मैच जारी है। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन

सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

ठीक 3 बज चुके हैं और मध्य रात्रि के इस प्रसारण सेवा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। इससे पहले कि प्रोग्राम में आगे बढ़े, लीजिए प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इससे पहले कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। दिल्ली यातायात पुलिस ने संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर आज से नई दिल्ली क्षेत्र में विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए ना तो कोई इजाजत मांगी गई है और ना ही दी गई है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी। भारतीय वायुसेना आज रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के डार्विन बेस पर एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 शुरू करेगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कल कोलकाता के विश्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से हावड़ा जिले के संकराइल में अमूल बंगाल डेयरी के दही बनाने के केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी। सरकार देश भर में मशीनीकृत स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र नमस्ते योजना को एक प्रमुख पहल के रूप में लागू कर रही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ रुपए मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। 7 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 57,000 से अधिक हो गई और एक व्यक्ति के मरने की खबर है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए आज से बृहस्पतिवार तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराईदेव, तिनसुकिया, लखीमपुर, शिवसागर, उदलगुरी और जोरहाट जिले प्रभावित हैं, जिनमें से अधिकांश ऊपरी असम में स्थित हैं। लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की और फीफा विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच मैच जारी है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। 3:02 हो चुके हैं। कुछ ही देर में आप तक पहुंचेगा कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज और मैं हूं रजत आपके साथ।

0: तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 4 बज रहे हैं। लीजिए अब सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इससे पहले कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। दिल्ली यातायात पुलिस ने संसद के मानसून सत्र के मद्देनजर आज से नई दिल्ली क्षेत्र में विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए ना तो कोई इजाजत मांगी गई है और ना ही दी गई है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी। भारतीय वायुसेना आज रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के डरविन बेस पर एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 शुरू करेगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कल कोलकाता के बिस्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से हावड़ा जिले के संक्राइल में अमूल बंगाल डेयरी के दही बनाने के केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी। सरकार देश भर में मशीनीकृत स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र नमस्ते योजना को एक प्रमुख पहल के रूप में लागू कर रही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ रुपए मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। 7 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 57,000 से अधिक हो गई और एक व्यक्ति के मरने की खबर है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए आज से बृहस्पतिवार तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराईदेव, तिनसुकिया, लखीमपुर, शिवसागर, उदलगुरी और जोरहाट जिले प्रभावित हैं, जिनमें से अधिकांश ऊपरी असम में स्थित हैं। लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली। और फीफा विश्व कप फुटबॉल 2026 के फाइनल में स्पेन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर नया चैंपियन बन गया है। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, और समय आपको बताए देते हैं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 4:03 और 34 सेकंड हुए हैं। और

अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सारेगामा। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी साथी अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यारा सा नमस्कार। तो लीजिए, आनंद लीजिए इन खूबसूरत से गीतों का नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक में।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
2: श्रोता सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम है सारी कामा और मैं हूं आपके साथ अलमास रजा।